0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्रावण प्रभात के इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस पुण्य कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। भगवान शिव और माँ पार्वती, आप इन दोनों की पूजाएं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती शिवस्य च शिवायाश्च वर्णा शिवभाविते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम। शिव और शिवा की कवच रूपी जो मूर्तियां हैं, शिव भाव से भावित हो करके शिव और पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके और मेरी संपूर्ण कामनाओं को सफल करें। वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकर्णस्तथा बलो विकर्णश्चैव बलप्रमथनः परः सर्वभूतस्य दमनस्तादृशाश्चाष्टशक्तयः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकर्ण बल विकर्ण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन, ये आठ भगवान शिव की मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियां भी हैं, जैसे वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकर्णी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही जो हैं और शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। प्रार्थना करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्चाप्येकनेत्रकः एकरुद्रस्त्रिमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च श्रीखण्डिकः तथाष्टौ शक्तयस्तेस्तेषां द्वितीयावर्णर्चिताः ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठ और शिखंडी, ये आठ विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियाँ अनंता सूक्ष्मा शिवा एकनेत्रा एकरुद्रा त्रिमूर्ति श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है श्रोताओं, ऐसे शिव और शिवा के ही शासन में और मेरी संपूर्ण कामनाओं को परिपूर्ण करें। भवाद्या मूर्तयाष्टाष्टौ तासामपि च शक्तयः महादेवादयश्चान्ये तथेकादश मूर्तयः शक्तिभिः सहिता सर्वे तृतीयावर्णे स्थिता सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्। भव आदि आठ मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों के सहित महादेव आदि ग्यारह

0: मूर्तियां जिनकी स्थिति, और तीसरे आवरण में है श्रोताओं शिव और पार्वती की आज्ञा श्रोधार्य करके, हे भगवान आप मुझे और अभीष्ट फल को प्रदान करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष

0: नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आर्ष सुभाषित सुधा श्रेय का साधन, निर्वृत्ति कर्मण पापात संतम पुण्य शीतलाहा, सद्वृत्ति सदुचार श्रेय एवं दतूनम, मानुष्य सुखम प्रायतम यह सर्जित स मुघ्रित, नालम च दुख मोक्षाय श्रृंगमय दुख लक्षण। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुष के वर्तलाप को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ मनुष्य का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है और कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए इन सभी ज्ञानों को लेकर के अपने जीवन में उतारना सबसे परम आवश्यक है, जिससे हम सब लोग सत्कर्मी बन सकते हैं। त्याग के समान सुख नहीं। नास्ते विद्या समम चक्षो नास्ते सत्यम समम तप, नास्ति रागम समम दुखम नास्ति त्यागम समम सुखम। ज्ञान के समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्य के समान दूसरा तप नहीं है, राग आसक्त के समान दूसरा दुख नहीं है और त्याग के समान दूसरा सुख नहीं है। जीवन और भोग दोनों लक्ष्य सिंगूर है। भोगा मिद्धवीतास्त्वं यकुलीकं त चंचला, आयुत्रिदा अग्नि संतो लोहत्सम जीवं विंधुनात। आकाश में घिरे हुए बादलों में जिस प्रकार बिजली प्रकाशित होकर तुरंत नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार संसार के भौतिक भोग भी देखते देखते विनष्ट हो जाता है। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

हरि ओम तत्सत् वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीता रामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आप सभी श्रोताओं का आज संडे 23 अगस्त के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्र पुत्रदा एकादशी का अत्यंत मंगलमय दिवस है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी केवल उत्तम संतान की कामना करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त परिवार के सुख शांति सदाचार आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन है। चलिए हम शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हुए आज दोहा संख्या 39 का हम लोग पाठ करें।

आई हाथ जोड़ करके सती माता श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहती है कि यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का जो व्रत है मन वचन और कर्म से सत्य है तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए।

श्री दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।

0: शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी भगवान शिव जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने से आसन दिया। आज इसको यही विराम दे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: दिवस के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रावण मास के विशेष कार्यक्रम में आर्य सभा मॉरिशस से पंडिता नर्मदा पतिया की ओर से श्रोताओं को हमारी सादर नमस्ते। सेवा में प्रस्तुत है एक वेद मंत्र। ओम पावकानः सरस्वती वाजे भीरवाजे नेवति यज्ञं वष्टु धियावसु ओम शम। यह मंत्र यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 84वां मंत्र है। इस मंत्र में विद्या की देवी सरस्वती माँ की महानता का वर्णन किया गया है। विद्या का अर्थ बहुत विस्तृत है। विद्या ही धर्म से लेकर मोक्ष तक सभी साधनों की प्रदात्री है। वेद विद्या से लेकर भौतिक ज्ञान तक जो हमें संसार में रहने योग्य बनाती है वह सरस्वती का ही रूप है, जो अभ्युदय और निःश्रेयस्य की सिद्धि कहलाती है वह भी सरस्वती कहलाती है। पावकानः सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती वाजे भी, जो अन्न को कहते हैं, हमें कृषि की अधिक विकसित व्यवस्था के बारे में जानकारी देकर पवित्र करती है। सरस्वती संसार में अन्न आदि उत्पन्न करने का ज्ञान देती है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी हमें यह बतलाती है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया कृषि का भी विकास होता गया। नई नई फसलों के बारे में जानकारी बढ़ी, सिंचाई की तकनीक विकसित हुई, हल बैल के अलावा अन्य साधनों का प्रयोग भी बढ़ा और कृषि उत्पादों की ज़रूरत भी बढ़ी क्योंकि जनसंख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही थी। यजुर्वेद में कहा गया कि अन्न के द्वारा पृथ्वी या देश या समाज की स्थिति का पता चलता है। यदि बड़े पैमाने पर अनाज उत्पन्न होता रहता है तो लगता है कि पृथ्वी की स्थिति अच्छी है, अर्थात प्रकृति अनुकूल है। वेदों में किसान बड़े योग्य विद्वान और अनुभवी बताए गए हैं। प्रकृति में उपलब्ध हजारों फसलों में से उन फसलों को चुना जो अधिक पौष्टिक अन्न देने वाली है और उन्हें उस क्रम में भी लगाया जिस क्रम में प्रकृति से उनका तालमेल बैठता है। कृषि योग्य भूमि, सिंचाई की व्यवस्था, सूर्य की किरणें फसल के उत्पादन में मदद कर रही है। ये सब ज्ञान उन्हीं बुद्धिमान लोगों की मेहनत का प्रयास है। अन्न उत्पन्न करने का ज्ञान वह भी सरस्वती है। इसी से मानव शक्तिशाली व त्यागशील बनकर संसार में अत्यंत मधुमेह बनता है, वह सरस्वती की ही अनुपम कृपा है। यज्ञम, इस प्रकार ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले शुभ कर्म हमारे जीवन को यज्ञमय बनाकर पवित्र कर देते हैं। किसान ही हम सब के अन्नदाता है, इसीलिए इस मंत्र में सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे शक्तिशालिनी सरस्वती, जितना तू पवित्र और श्रेष्ठ है उतना ही तू हमें यज्ञमय बनाकर उत्तम बना। वष्टु, संसार में बसने वालों को धीय, शक्तिशाली, धारणावती बुद्धि, वैज्ञानिक सोच रखना। वसु, इस संसार में रहने योग बन जाना। जिस भाव से माँ अपने बच्चों को पालती है उसी निस्वार्थ भाव से सरस्वती माँ, विद्या की देवी, हमें विद्या प्राप्ति ही हमारा श्रेष्ठ कर्म बनाकर धर्म के रास्ते पर अग्रसर कराएं।

जीवन यापन के लिए अर्थ, रुपया, पैसा, धन धान्य संपन्न कराएं, हमारी कामनाएं पूर्ण हो, हमें पाप का पवित्र करने वाली ऐसी शक्तिशाली बनाने वाली विद्या प्रदान करके यज्ञम श्रेष्ठम कर्म कराने वाली वस्तु संसार में सरस्वती विद्या की देवी ज्ञान प्रदान करने वाली वाजे भी उत्तम विद्या रूपी अन्न से जो पौष्टिक सरस और मधुरता से पूर्ण हो, जिससे हम अपने जीवन में उसका समुचित प्रयोग कर सकें। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास एवं श्रावण मास के पावन अवसर पर वेद संदेश श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद पाठ अर्थ सहित।

तत परिष्वजीयसी देवतां सां मम प्रिया। अर्थ, परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होकर प्राणियों के भीतर रम कर उनको बल देता है, इसी से वह सब प्राणियों का प्रिय है। ओम कल्याण्यजराव मर्त्यस्यामृता गृहे यस्मै कृताशैस यश्चकार जजारस। अर्थ, प्रकृति जगत का कारण प्रत्येक मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर में है। परमेश्वर ने प्रकृति को अनेक उपकारों के लिए कार्य रूप जगत में परिणत किया है। वह परमात्मा सबका उपास्य देव है। ओम त्वं स्त्री त्वं पुमानसि

दंडी न वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख। अर्थ, जैसे परमात्मा में कोई लिंग विशेष नहीं है, वैसे ही जीवात्मा में भी नहीं है। वह शरीर के संबंध से स्त्री पुरुष लड़का लड़की आदि होता है। वह शत्रुओं का दमन करके सब ओर दृष्टि करता हुआ धर्मात्मा होकर स्तुति और कीर्ति पाता है।

जीवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात स उगर्भी अंत। अर्थ, नित्य जीवात्मा शरीर के संबंध से पिता पुत्र आदि कहता है। इस जीवात्मा से भी सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब में व्यापक है। ओम पूर्णा।

0: तिस्रो ईरयति प्रवहनीतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषां गावुयन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः।
1: सृष्टि की आदि में दयालु परमात्मा ने अपने दिव्य ज्ञान को सर्वाधिक पुण्यात्मा तथा अग्रणी ब्रह्म ऋषियों के हृदय में प्रदान किया। ईश्वर की पवित्र वाणी वेद ब्रह्म ऋषियों के हृदय में पहुंची। ईश्वर की वाणी ही वेद वाणी कहलाती है। वेद वाणी ज्यों के त्यों ब्रह्म ऋषियों द्वारा जिज्ञासु मनुष्यों तक पहुंचाई गई। ऋषियों ने अपनी ओर से उनमें कुछ भी परिवर्तन व परिवर्धन नहीं किया। सांसारिक पदार्थों का नामकरण भी वेद के आधार पर किया। ज्ञान के वाहक ऋषियों ने वेद ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को विकसित कर उत्तम कर्म में प्रवृत्त हुए और अन्यों को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा दी।
0: ओम अपामी वामपस्त्रिद्धमा उपसेधत दुर्मतिम आदित्यासो युयोतनानु अंहसः।
1: विद्यारूपी प्रकाश से सूर्य के समान उपदेशक गुरु माता पिता हमारे बाह्य और आंतरिक रोगों को दूर करें, हमारे कष्टों को दूर करें। मन में अहितकारी एवं हिंसा की भावना पनपने न पाए। कुटिलता एवं पाप युक्त बुद्धि दूर हो। हम पाप कर्मों से सदा दूर रहें। सुशिक्षा से सबका शारीरिक आत्मिक और बौद्धिक विकास हो। कुटिलता हिंसा और रोग हमारे सर्वांगीण विकास में बाधा न बने। शिक्षा से युक्त ज्ञानी जन हमारा मार्ग प्रशस्त करें।

मानव के जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर यज्ञ करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। अग्नि को प्रदीप्त करके पवित्र मन और पवित्र बुद्धि से जो यज्ञ करता है उसका सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। यज्ञ से मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यज्ञ से धारणावती बुद्धि को सही दिशा मिलती है। जिस प्रकार समिधा द्वारा अग्नि को स्थिर रखा जाता है, उसी प्रकार धर्म रूपी समिधा से मन, बुद्धि और आत्मा में ज्ञान और श्रद्धा रूपी अग्नि को प्रकाशित किया जाता है।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आगे इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार, नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार रिया, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। पुदोदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मौत के मामले में शामिल हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद जुर्के ने गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेड 6 की एक छात्रा के कूद कर गिरने की घटना सामने आई। इस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। जारी जाँच के नतीजों पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना इन घटनाओं ने एक अहम सवाल को फिर सामने ला दिया है। क्या हम जानते हैं कि हमारे बच्चे और किशोर किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या नहीं। कुछ बर्तावों के पीछे कभी कभी मानसिक परेशानी, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक दबाव या भावनात्मक पीड़ा छिपी हो सकती है। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में ही संभव हो पाया जिन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत थी। साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिला है। इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना है। पुटरी में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबेयरविल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण एथनोग्राफिक कलेक्शन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी म्यूजियम में मात्र 3 मूर्तियां प्रदर्शित हैं जबकि बाकी के 50 पीस को अभी फ्रांस में है रखा गया है। उन्हें 2027 तक यहाँ लाने की योजना बनाई गई है। विदेश में यूक्रेन में बचाव कर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं। केवीरी में 2 ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 और अधिकतम 22 से 24 जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:59 पर होगा।
2: RM3 Radio.

0: आज की उर्दू महफिल सबाल खैर की इब्तिदा हस्बे आदत तिलावती कुरान पाक की चंद आयतों से करते हैं। समाअत कीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
2: अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला।
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने उनके अमल बर्बाद किए, और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर उतारा गया, और वही उनके रब के पास से हक है, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उतार दी और उनकी हालतें सवार दी। ये इसलिए कि काफिर बातिल के पैरो हुए और ईमान वालों ने हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से है। अल्लाह लोगों से उनके अहवाल यूं ही बयान फरमाता है।

0: بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: तो जब काफिरों से तुम्हारा सामना हो तो गर्दनें मारना है यहाँ तक कि जब उन्हें खूब कत्ल कर लो तो मजबूत बांधो, फिर उसके बाद चाहे एहसान करके छोड़ दो चाहे फिदिया ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई अपना बोझ रख दे। बात यह है और अल्लाह चाहता तो आप ही उनसे बदला लेता, मगर इसलिए कि तुम में एक को दूसरे से जांचे, और जो अल्लाह की राह में मारे गए अल्लाह हरगिज उनके अमल जाया न फरमाएगा।

0: أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
1: जल्द उन्हें राह देगा और उनका काम बना देगा और उन्हें जन्नत में ले जाएगा, उन्हें उसकी पहचान करा दी है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा, और जिन्होंने कुफ्र किया तो उन पर तबाही पड़े और अल्लाह उनके अमाल बर्बाद करे।
0: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

ये इसलिए कि उन्हें नागवार हुआ जो अल्लाह ने उतारा, तो अल्लाह ने उनका किया धरा का रद्द किया। तो क्या उन्होंने जमीन में सफर न किया कि देखते उनसे अगलों का कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह ने उन पर तबाही डाली, उन काफिरों के लिए भी वैसी कितनी ही हैं। ये इसलिए कि मुसलमान का मौला अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला नहीं।

0: बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए बागों में जिनके नीचे नहरें रवा, और काफिर बरतते हैं और खाते हैं जैसे चौपाए खाएं, और आग में उनका ठिकाना है। और कितने ही शहर की इस शहर से कुव्वत में ज्यादा थे जिसने तुम्हें तुम्हारे शहर से बाहर किया, हमने उन्हें हलाक फरमाया तो उनका कोई मददगार नहीं। तो क्या जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो उस जैसा होगा जिसके बुरे अमल उसे भले दिखाए गए और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले।
1: मैं

अहवाल उस जन्नत का जिसका वादा परहेजगारों से है, उसमें ऐसी पानी की नहरें हैं जो कभी न बिगड़े, और ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका मजा न बदला, और ऐसी शराब की नहरें हैं जिसके पीने में लज्जत है, और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया, और उनके लिए उसमें हर किस्म के फल हैं और अपने रब की मगफिरत। क्या ऐसे चैन वाले उनके बराबर हो जाएंगे जिन्हें हमेशा आग में रहना और उन्हें खौलता पानी पिलाया जाए कि आंतों के टुकड़े टुकड़े कर दे।

और उनमें से बास तुम्हारे इरशाद सुनते हैं, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास से निकल कर जाएं, इल्म वालों से कहते हैं अभी उन्होंने क्या फरमाया। ये हैं वो जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी और अपनी ख्वाहिशों के ताबे हुए, और जिन्होंने राह पाई अल्लाह ने उनकी हिदायत और ज्यादा फरमाई और उनकी परहेजगारी उन्हें अता फरमाई।

तो काहे के इंतजार में है मगर क्यामत के कि उन पर अचानक आ जाए कि उसकी अलामतें तो आ ही चुकी हैं। फिर जब वो आ जाएगी तो कहां वो और कहां उनका समझना। तो जान लो कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं। और ए महबूब, अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफी मांगो, और अल्लाह जानता है दिन को तुम्हारा फिरना और रातों को तुम्हारा आराम लेना।

ये इसलिए कि उन्होंने कहा उन लोगों से जिन्हें अल्लाह का उतारा हुआ नागवार है, एक काम में हम तुम्हारी मानेंगे और अल्लाह उनकी छुपी हुई जानता है, तो कैसा होगा जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे उनके मुंह और उनकी पीठें मारते हुए। ये इसलिए कि वह ऐसी बात के ताबे हुए जिसमें अल्लाह की नाराजी है और उसकी खुशी उन्हें गवारा न हुई, तो उसने उनके आमाल अकारत कर दिए।

0: أَكْبَارَكُمْ
1: क्या जिनके दिलों में बीमारी है इस घमंड में है कि अल्लाह उनके छुपे बैर जाहिर न फरमाएगा, और अगर हम चाहें तो तुम्हें उनको दिखा दें कि तुम उनकी सूरत से पहचान लो, और जरूर तुम उन्हें बात के असलूब में पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे अमल जानता है, और जरूर हम तुम्हें जांचेंगे यहां तक कि देख लें तुम्हारे जहाद करने वालों और साबिरों को, और तुम्हारी खबरें आजमा लें।

0: बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल की मुखालिफत की, बाद इसके कि हिदायत उन पर जाहिर हो चुकी थी, वो हरगिज अल्लाह को कुछ नुकसान न पहुंचाएंगे और बहुत जल्द अल्लाह उनका किया धरा अकारत कर देगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने अमल बातिल न करो। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका फिर काफिर ही मर गए, तो अल्लाह हरगिज उन्हें न बख्शेगा।
1: फला तहिनु वतदउ इला सल्म वअंतुमुल अअलऊन वल्लाहु मअकुम वलन यतरकुम अअमालकुम إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم।
0: तो तुम सुस्ती न करो और आप सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही गालिब आओगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हरगिज तुम्हारे आमाल में तुम्हें नुकसान न देगा। दुनिया की जिंदगी तो यही खेल कूद है और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो वो तुमको तुम्हारे सवाब अता फरमाएगा और कुछ तुमसे तुम्हारे माल न मांगेगा।
1: इन

0: तलबकुम,
1: अगर उन्हें तुमसे तलब करे और ज्यादा तलब करे तुम बुखल करोगे और वो बुखल तुम्हारे दिलों के मैल जाहिर कर देगा। हाँ हाँ, ये जो तुम हो बुलाए जाते हो कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में कोई बुखल करता है और जो बुखल करे वो अपनी ही जान पर बुखल करता है और अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज। और अगर तुम मुंह फेरो तो वो तुम्हारे सिवा और लोग बदल लेगा, फिर वो तुम जैसे न होंगे।
2: सदकल्लाहुल अज़ीम। अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारक की तिलावत समाअत की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वह हमें इन आयतों के सुनने का अजर सवाब अता करे और हमें हर रोज़ सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। पेश खिदमत है हम्द, आइए समाअत करते हैं।

अपना पीठ खोलें जहाँ हुजूर सलाम ने बोसा दिया था, वहीं मैं भी बोसा दूंगा। चुनाचे उन्होंने पीठ को खोला और आपने वहीं उनको बोसा दिया जहाँ हुजूर सलाम बोसा दिया करते थे। ये मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में है। एक बार बहुत से लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, इत्तेफाक से इमाम हुसैन आए, सलाम किया और सब ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस खामोश रहे। जब सब चुप हुए तो आवाज़ बुलंद कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये कहकर सब की तरफ मुखातब होकर फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि ज़मीन के रहने वाले लोगों में और आसमान वालों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? यही जो जा रहा है जंगे सिफीन के बाद, उसने मुझसे बातचीत नहीं की। अगर वो मुझसे राज़ी हो जाएं तो ये मुझे सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा महबूब है। हज़रत अबू तुफ़ैल अली रदी अल्लाह अन्हु के बड़े सख्त हामी थे। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के विसाल के बाद एक बार हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तुम्हारे दोस्त अबुल हसन के गम में तुम्हारा क्या हाल है? बोले, मूसा के गम में जो हाल उनकी माँ का था वो हाल मेरा सैयदना अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत और विसाल पर है। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु से वरासत का मुतालबा किया और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सलाम के क़राबत के हुकूक जताए, तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने उस मौके पे जो तकरीर की, इसमें ख़ास तौर पर अहले बैत की मोहब्बत का इजहार फरमाया और कहा कि इस ज़ाती कसम जिस के हाथ में मेरी जान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत के हुकूक़ का लिहाज मुझे अपनी क़राबत से ज़्यादा है, लोगों को भी उनके हुकूक़ के लिहाज रखने का हुक्म दिया। एक बार हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मामले में हज़रत उमर से इसरार किया और कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, अगर मूसा के चचा आपके पास मुसलमान होकर आते तो आप क्या करते? बोले, उनके साथ हुस्न सलूक करता। हज़रत अब्बास ने कहा कि फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हूँ। बोले, ए अबुल फजल, आपकी क्या राय है? खुदा की कसम, आप के बाप मुझे अपने बाप से ज़्यादा महबूब हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बाप से ज़्यादा महबूब थे और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत पर तरजीह देता हूँ। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो बनु हाशिम ने अलग और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अलग अंसार की तमाम आबादियों में इसका ऐलान करवा दिया। लोग इस कसरत से जमा हुए कि कोई शख्स ताबूत के पास न जा सकता था। खुद बनु हाशिम को लोगों ने इसी तरह घेर लिया कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने पुलिस

0: इसके ज़रिए से उनको हटाया। अरब में जब कहत पड़ता तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के वसीले से बारिश मांगते और ये कहते कि ए अल्लाह, हम पहले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाते और तू पानी बरसाता, अब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाते हैं, हमारे लिए पानी बरसा, बारिश उतार। ये वो अजीम मोहब्बत के अजीम वाक़यात हैं जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिले में अहले बैत एज़ाम से पेश आए। अल्लाह पाक हमें अहले बैत एज़ाम के अदब की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।
1: अभी आपने जामे मस्जिद पोर्टलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दामर बरकातहुमुल आलिया का बयान सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में मुसलसल वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि वो उसे वारिस बना देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुआशरा कायम किया जिसमें पड़ोसी सिर्फ साथ रहने वाला शख्स नहीं बल्कि हुकूक रखने वाला इंसान है। इस तालीम से मुआशरे में मोहब्बत, ताउन और भाईचारा पैदा होता है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक खूबसूरत इमारत बनाई मगर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। लोग उसके गिर्द घूमते और ताजुब करते थे, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नबुवत का सिलसिला मुकम्मल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने दीन की तकमील फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अज़ीम नियमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को तौहीद, ईमान, इल्म, अखलाक, अदल, रहम, इख्वत और इंसानियत का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, गरीबों और कमज़ोरों के हुकूक़ की हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के बजाय इंसाफ, नफ़रत के बजाय मोहब्बत और जहालत के बजाय इल्म का रास्ता दिखाया। इसलिए विलादत

मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी तकाजा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तेबाए सुन्नत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।

टप करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो समीर आपके खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। भक्ति में शक्ति। समस्त श्रोताओं को नीतू शाह का करजोड़ प्रणाम। इस समय रेडियो मनोरंजन पर आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए श्री गणेश करती हैं।

श्रोताओं, सुबह शाम हम सब प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसका महत्व क्या है, क्या हम जानते हैं? जीवन के इस भाग दौड़ में इंसान दिन भर बाहर की दुनिया देख लेता है, पर अपने अंदर झांकना भूल जाता है। सुबह और शाम की प्रार्थना हमें इस भूल से वापस लाती है, हमें हम तक और ईश्वर तक पहुंचाती है।

0: सुबह की प्रार्थना एक नई शुरुआत होती है। जब प्रभात की पहली किरण धरती को छूती है, तब मन को भी एक नया प्रकाश मिलता है। सुबह प्रार्थना करने से लगता है जैसे परमात्मा खुद हमें हाथ पकड़कर कहता हो, आज का दिन तुम्हारे लिए एक वरदान है, इसे शुभ भाव से जियो।
1: भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति।

सुबह की प्रार्थना से सोए हुए संकल्प जाग जाते हैं, मन हल्का हो जाता है और दिन भर के काम एक पवित्र ऊर्जा के साथ पूरे होते हैं। ये हमें स्मरण कराती है कि हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाए, दिन की पहली सांस प्रभु को याद करके लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है।

शाम की प्रार्थना जीवन का विश्राम होती है श्रोताओं। दिन भर हम कितने ही कठिनाइयों से क्यों ना गुजरे हो, कितने ही उलझनों का बोझ दिल में क्यों ना हो, पर जैसे ही शाम का अंधेरा चमक कर सामने आता है, प्रार्थना हमें शांति का एक गहरा आश्रय देती है। शाम की प्रार्थना कहती है, जो हो गया उसे प्रभु को समर्पित कर दो और रात की शांति में अपने मन को धुलने दो। शाम की प्रार्थना से मन का बोझ हल्का होता है, अपराध बोध, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे पानी की तरह बह जाते हैं। रात की नींद भी तभी गहरी होती है जब मन प्रभु के नाम से हल्का कर दिया जाए।

श्रोताओं, सुबह और शाम की प्रार्थना का सार यही है। सुबह हम ईश्वर से शक्ति मांगते हैं, शाम हम अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देते हैं। सुबह हम अपनी कोशिशों का संकल्प लेते हैं और शाम उन कोशिशों का फल प्रभु के चरणों में रख देते हैं। श्रोताओं, प्रार्थना कभी समय की पाबंद नहीं होती, पर सुबह और शाम का समय प्रकृति के सबसे शुद्ध पल होते हैं, जहां हवा पवित्र होती है, मन शांत होता है और प्रभु हमें सबसे करीब महसूस होते हैं।

一份长久的期许过后，来感受心底那一点心动。接下来请欣赏张信哲、赵新月带来的有一点心动。

世事总有万般遗憾，倘若爱还在，便是此生最美相逢。请听有声之恋，海来阿木。

0: सिटी सुनते संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे याचना नमस्कार
1: नमस्कार नीलमणि सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार श्रावण मास अब चरम पर है एक हफ्ते में यानी 28 अगस्त को श्रावण मास समाप्त होगा और इसी दिशा में इस पावन मास की शुरुआत से ही लोग गंगा तालाब की यात्रा कर रहे हैं कुछ लोग गाड़ियों में बसों में या कुछ कांवड़ लिए पदयात्रा करके जा रहे हैं कल वहां पर श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया और साथ में गंगा आरती भी की गई और आज मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से एक पांचमुखी गणेश मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजा की गई ये मंदिर महाशिवरात्रि तक पूरी हो जाने की उम्मीद है पोटली में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबाविल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाली एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है अभी अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी म्यूजियम में मात्र 3 प्रतिमाएं रखी गई हैं जिन्हें प्लास्टर से बनाया गया है और जिनको मॉरिशस के गुलामों का आकार दिया गया है जान ले कि बाकी के जो 50 बस्त हैं वो अभी भी फ्रांस में रखे गए हैं उन्हें 2027 तक यहाँ लाने की योजना बनाई जा रही है पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज़्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में ही संभव हो पाया है जिन्हें स्पेशलाइज्ड इलाज की ज़रूरत थी साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर भी मिला इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों का इलाज को इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत को कम करना है विदेश की खबरों में यूक्रेन के बचावकर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग सेंटर के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं वहां पर इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर पर 2 ड्रोन्स गिराए गए 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 130 लोग लापता हुए हैं घायल हुए हैं 4 लोग लापता हैं बचाव अभियान अगले 2 दिनों तक चल सकता है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया ये थी अब तक की खबरें आपके ध्यान के लिए धन्यवाद हमें आज्ञा दीजिए
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: बारह बजकर आठ मिनट हुए हैं। आज है संडे का दिन, 23rd of August, 23 अगस्त 2026। नमस्कार जी, प्रणाम, आदाब और वरी

खूबसूरत सा गुड आफ्टरनून आप सभी को। दिल विल प्यार व्यार हम क्या जाने, बस इतना पता है हमें कि संडे का जो सुहाना सफर प्रोग्राम है ना, उसका स्पेशल लेजी आफ्टरनून शो में आना ही आना है। अपने दोस्तों से मिलना है, बात करना है, मैसेजेस पढ़ना है और ढेर सारी बातें करना है, साथ में ढेर सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से गाने आपको सुनाने हैं। और रविवार की इस खूबसूरत दोपहर में आपका अपना रेडियो साथी, आपकी अपनी आवाज़ फिर एक बार हाजिर है एक बेहद प्यारे सुरीले और दिल को छू जाने वाले सफ़र के साथ। मैं हूँ देविना, आप सबों का साथ देने वाली हूँ 3 बजे तक। और जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका सुहाना सफ़र के इस प्रोग्राम में, जहाँ सफ़र है यादों का, साथ है संगीत का और हर गीत के साथ जुड़ी है किसी न किसी दिल की कहानी। तो आप सुन रहे हैं MBC RM Free रेडियो मनोरंजन और आपके साथ इस रविवार की दोपहर को बनाने के लिए बिल्कुल है तैयार। तो ज़रा अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दीजिए, आप गर्मा गर्म लंच ले रहे हैं ना, तो बस बना पेची शुभाहार, खिड़की से आती हवा का आनंद लीजिए। आज ठंड है, बस आज वेरी कूल, और बस संगीत को दिल तक उतरने दीजिए, क्योंकि आज का हमारा सफ़र होगा कभी मुस्कुराता हुआ, कभी रोमांटिक, कभी यादों में खोया हुआ और कभी बिल्कुल मस्ती से भरपूर गाने। तो आवाज़ जो है रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, दिल का वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा बढ़ाइए और चल पड़िए मेरे साथ। और आज कश्मीर की कली हूँ मैं, कश्मीर की कली हो या जंगली में वो दिखी थी, पड़ोसन में दिखी थी, अप्रैल फूल में दिखी थी, शागिर्द और आदमी और इंसान गोपी, हम किसकी बात कर रहे हैं आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। आज है स्पेशल डे फॉर सायरा बानू, द लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, और आज उनका है हैप्पी बर्थडे। सो बस एक दो गाने उन पर चलाएंगे, साथ ही आप पर आपके दिल को जो भाए हुए गाने।

जहाँ 12:18 हुए हैं और आज का संदेह है कुछ खास, क्योंकि आज है बर्थडे उस एक्ट्रेस की का जिसका चेहरा ही परी जैसी जैसा हो और साथ में उनकी आवाज़ का कहना, और उनकी शादी हुई थी द लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब के साथ। तो बस उन पर कुछ बातें करेंगे सैरा बानू की, और हम जानते हैं उनके बहुत से फैंस हैं, उनकी फिल्मों के दीवाने, उनके गीतों के दीवाने, और हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं आज, और आपको जो सुनना है हम सुनाएंगे। बाकी अगर कुछ अलग सा गाना भी आपको सुनना है तो हम कोशिश करेंगे

उसको यहां पर शामिल करने की और आज है सुहाना सफर प्रोग्राम मौसम भी सुहाना है कुछ ठंडी हवा चल रही है बस आपका साथ है हमें और क्या चाहिए जिंदगी में और वैसे हमेशा कहते हैं ना कुछ गीत जो सिर्फ सुने नहीं जाते महसूस किए जाते हैं किसी भी गीत में बचपन छुपा होता है किसी गीत में पहला प्यार किसी गीत में दोस्तों की महफिल और किसी गीत में वो इंसान जिसकी याद आज भी दिल में बिल्कुल ताज़ा है तो शुरुआत हमने किया कश्मीर की कली से और इसके बाद कितने प्यारे प्यारे गाने आपने सुने अभी तक तो बस अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना हम सुनाएंगे मगर ये जो है सारा बानू पर पिक्चराइज नहीं है वो धर्मेंद्र साहब के फैंस के लिए फिल्म है धर्मवीर और यहाँ पर एक मैसेज पढ़ते हैं हेलो ब्यूटीफुल आप भी ब्यूटीफुल हेलो आपको हाँ हम बिल्कुल ठीक ठाक है और धर्मवीर वाला गाना ये गाना माधुरी जी आपके लिए और सभी आरएम टीम के लिए थैंक यू सो मच so

जहाँ अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देखकर गीत गाया करेगी, और मुझे देखकर तुम ना आंसू बहाना, बस इतनी गुजारिश है तुम मुस्कुराना। तेरे प्यार में रंग भरते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे। अप्रैल फूल वाला गाना था और इसको बहुत किस पसंद आया बिमला जी को, और वे सुनना चाहती थी खास अपने पति चांद की याद में। याद दिल में लिए बिमला जी शुमार करने की हैं और पति चांद को याद कर रही है। डेडिकेटेड इन सॉन्ग टू श्यामा जी, ऑफ कोर्स श्यामा जी हैं और शुमार करने की हैं, और साथ में करुणा है और साथ में राजेश। चलिए अगले गाने की ओर, और इस गाने की मांग आई है दो दो लोगों की ओर से। आई मिलन की बेला फिल्म का गाना है लता जी की आवाज़ में, और साथ में होंगे रफ़ी साहब। और आज हम खासकर किस पर बात कर रहे हैं, सायरा बानो पर। तो उनके गीतों के फ़ान हैं गायत्री जी, और ये गायत्री जी डेडिकेट कर रही हैं बहन अमृता के लिए। साथ में भाभी मीरा है, सुधा, सुधीर, कमलेश, गिनिशा, मेधा और उनके सभी परिवार हैं उनके लिए। साथ में एक और डेडिकेशन है इस गाने पर माला जी और वेजरों पर। वे सारा बानो के ज़बरदस्त फ़ान हैं, और उन खास उनकी जो बहू हैं इस गाने को बहुत पसंद करती हैं किरण। साथ में केविन, कनील, कबीर, कनीश, शिव और सत्यम।

कितना ब्यूटीफुल सा गाना है लता जी की आवाज़ में, फिल्म आया गया ऑन सैरा बानू, और ये गाना जाएगा खास तौर पर कटोबोन की बीना जी के लिए, सभी दोस्तों के लिए, और सैरा बानू के बहुत बड़ी फ़ान नहीं बल्कि उनके गानों के फ़ान ज़रूर हैं बीना जी। सो एन्जॉय इट।

जी हाँ दोस्तों, सारा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म जंगली से की। उसका गाना आपने सुना पहले, अभी इसके बाद भी एक दो गानों के बाद भी उनका जो उन पर पिक्चराइज गाना जो है जंगली का, वो हम चलाएंगे। और उसकी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में उन्होंने अपनी पहचान बना ली। और इस फिल्म का संगीत वाह क्या कहने, शम्मी कपूर साहब साथ में सारा बानो की जोड़ी और उस दौर का यूसफुल रोमांस आज भी यादगार है। तो जन्मदिन के इस खास मौके पर आप सुन रहे हैं सारा बानो पर पिक्चराइज कुछ प्यारे से गाने। आपके हिसाब से जो गाना आप सुनना चाहते हैं हम चला रहे हैं, साथ में हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी गाने हैं आपको खुश करने के लिए। और सायरा बानो की बात चली तो कैसे भूलें उनकी वो चुलबुली मुस्कान। और सच कहें तो जंगली ने सायरा बानो को रातों रात पहचान दिलाई। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग थी, मासूमियत खूबसूरती थी और एक नेचुरल चार्म थी। सारा बानो ने अपने करियर में रोमांस, ड्रामा, इमोशनल रोल्स, हर तरह के किरदार निभाए। और हाँ जी, अगर हिंदी सिनेमा की सबसे एंटरटेनिंग फिल्मों की बात हो तो पड़ोसन का नाम ज़रूर आएगा। ऑफकोर्स उसमें क्या हंगामा हुआ था उस फिल्म में, सुनील दत्त साहब, सारा बानो, किशोर कुमार साहब, महमूद, साथ में मुकरी जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म आज भी लोगों को हंसाती है। और सायरा बानो का भोलापन और चुलबुलापन इस फिल्म की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा था। तो चलिए इन यादगार लम्हों को जिएंगे आज की सुहाना सफ़र प्रोग्राम में। एक दो गाने हमारे पसंद के, एक दो गाने आपके पसंद के। और अभी के लिए बस चेंज करते हैं, ब्रेक लेते हैं सायरा बानो से और सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में बेहद ही खूबसूरत सी गज़ल और किसने भिगे हुए। और ये गाना जाएगा खास तौर पर घों गोब की श्याम रघुनंदन जी के लिए। और डेडिकेट कर रही है ये गाना अपने भाई जयप्रकाश के लिए। भाभी है नम्रता, निफ्यूज है केशव और युधिष, साथ में उनकी जो सहेलियां हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वीना रामफोल, विश्वानी दुखी और साथ में नंदिनी ओकलू। सो बस ये हो जाए सभी गज़ल लवर्स के लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जी अगर इस गाने को सुनकर आप नाच उठे या फिर आप मुस्कुरा उठे या फिर आप गुनगुना उठे तो बस हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई, क्योंकि ऐसे गाने सुनकर कौन खुश नहीं होगा भाई। और इसमें आवाज़ किशोर दा की और साथ में चांद का जो टुकड़ा था ना, वो थी सायरा बानू और साथ में थे सुनील दत्त साहब। कितना मजाकिया फिल्म था और आज भी लोग इस गाने को, इस फिल्म को भी देखना पसंद करते हैं, गाते भी हैं। सो बस ये गाना गुनगुनाते चले और एक बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और इसके बाद प्रोग्राम हम जारी करेंगे यहीं पर RM3 रेडियो मनोरंजन पर। सुहाना सफर प्रोग्राम आप सबों के साथ।

आज आप सुन पाएंगे समाचार, पर इससे पहले आपको बता देते हैं हमारा जो टीम है ना और एम फ्री रेडियो मनोरंजन का रेडियो है वो 25th of August यानी कि ट्यूसडे को मनाएगा उनका अपना फर्स्ट एनिवर्सरी रेडियो मस्ती के साथ। सो देख

0: मस्ती भरा प्रोग्राम जहां पर होंगे नाच गाने और सब बिल्कुल बहुत सारा फन हमने किया एक साथ. सो आप सुनते हैं हमारी आवाज़, आप देख पाएंगे अपने फेवरेट आरजे को भी. तो ट्यूजडे रात 8:30 MBC फ्री पर.
1: एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. बच्चों और किशोरों की मानसिक स्थिति को समझने की ज़रूरत पर एक बार फिर जोर. पुदोदो में 14 साल के किशोर से जुड़ा मामला और कुछ दिनों बाद जुल के निग गवर्नमेंट स्कूल में ग्रेड 6 की छात्रा के गिरने की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं. दोनों मामलों की जाँच जारी है. शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद का कहना है कि स्कूलों में बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना ज़रूरी है. उनके अनुसार बच्चों की बात सुनना, उनकी परेशानियों को समय रहते पहचानना और स्कूलों में सुरक्षित माहौल देना अहम है. जटिल बीमारियों के इलाज के लिए कुछ मरीजों को अब विदेश भेजने की जरूरत कम करने की कोशिश की जा रही है. पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से अधिक जटिल मामलों का इलाज विदेशी डॉक्टरों के सहयोग से किया गया है. इससे मरीजों को देश में ही विशेष इलाज मिल रहा है. साथ ही स्थानीय मेडिकल टीमों को विदेशी विशेषज्ञों से नई टेक्निक और अनुभव सीखने का मौका मिल रहा है. इसका उद्देश्य मॉरिशस में विशेष इलाज की क्षमता को और मजबूत करना है. समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मॉरिशस के 2400 पंजीकृत मछुआरों को मुफ्त फर्स्ट एड किट्स दिए जा रहे हैं. बजट 2025-2026 में घोषित इस योजना की शुरुआत बॉम्बू विरियो और मेबर्ग से हुई. बॉम्बूवियों में 75 मछुआरों को किट्स और 25 कूलर दिए गए. अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदा उठाने का आरोप लगाया है. व्यापार वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है. इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. Amuse Lane, Nouvelle-France में 77 साल के 77 years old के श्री करमवीर पूरन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें उदू के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हें के मकान Nouvelle-France से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की मिसिज डेजी रानी सिबन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें आरती के नाम से ज़्यादा जानती थी. उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 उनकी माँ चिंता सिबल के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3.

0: सुहाना सफर।
1: वेलकम बैक टू दिस सेकंड आवर ऑफ सुहाना सफर प्रोग्राम। देविना है आपके संग 3 बजे तक, मगर 12 बजे से 1 बजे तक आपने सुना सहरा बानू पर पिक्चराइज कुछ गाने, और कुछ गाने हैं यहाँ पर साथ ही आपके ही मनपसंद कुछ गाने भी, तराने भी हम चलाएंगे ऑफ कोर्स। सो ऑरम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर प्रोग्राम, जहाँ पर यादें ताज़ा होती हैं और साथ में सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी फीलिंग्स भी आप जाहिर करते हैं हमारे साथ, हमसे शेयर करते हैं प्यारी प्यारी बातें। अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करते करते हम सब लोग एक फैमिली के जैसे हो गए हैं, एक हम दोस्तों का रिश्ता है सब कुछ। सो बस हमारी दोस्ती सलामत रहे। सो छोटी सी उम्र में लग गया रोग, हाँ जी, बैराग मूवी का गाना पिक्चराइज ऑन सहरा बानू। और रिश्ते की बात की तो जिसने हिंदी सिनेमा की कहानी में एक बेहद खूबसूरत अध्याय जोड़ा, सहरा बानू और दिलीप कुमार साहब ने। वैसे सहरा बानू और दिलीप कुमार साहब की प्रेम कहानी को बॉलीवुड की सबसे चर्चित और खूबसूरत प्रेम कहानियों में गिना जाता है। दोनों ने 1966 में शादी की। उम्र के अंतर के बावजूद दोनों के रिश्ते में जो प्यार, सम्मान और कंपेनियनशिप दिखाई दी, वह लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का विषय रही और वे एक एग्जाम्पल बन गए प्रेम कहानी की। सहरा बानू ने कई मौक़ों पर दिलीप कुमार साहब के प्रति अपने प्यार और सम्मान को बेहद खूबसूरत शब्दों में व्यक्त किया, और आज जब

हम सारा बानो का जन्मदिन मना रहे हैं तो उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण रिश्ते को याद करना भी स्वाभाविक है। और एक रिश्ते की खूबसूरती सिर्फ साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने में होती है और हमने ये सीखा है सायरा बानू जी से। सो अब जो इस गाने की मांग आई है, जो अगला गाना है ना, सो बस ये गाना होगा विमला जी के लिए ऑफ कांगो। अमन मूवी का गाना है अपनी किया की, पिया की मैं प्रेम पुजारन, और उनकी जो बेटी है होशिका उनके लिए भी। और हाँ जी, और बता रहे थे आपको कि आप अपने फेवरेट आर्जेस को देख पाएंगे ऑन स्क्रीन ट्यूसडे को, ट्यूसडे 25th of August रात के 8:30 MBC फ्री पर सभी आर्जेस के साथ आप मना पाएंगे द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन एक साथ। सो आप हमें देख पाएंगे। अगर आप हमारी सिर्फ आवाज़ सुनते हैं मगर हम कैसे हैं हम देख नहीं पाए, तो बस उस दिन भूलिएगा मत, 8:30 MBC फ्री TV पर आप देख पाएंगे अपने सभी कुछ एक दो आवाजेस को जो आपका साथ देते हैं रेडियो मनोरंजन पर। सो बस अगला गाना जो है अपने पिया की प्रेम पुजारन फॉर यू विमला जी।

आप जैसे कोई नहीं है, हमारे जो दोस्त हैं आप ना, बस देखते देखते एक साल होने वाला है जब से ये जो प्रोग्राम है सुहाना सफ़र प्रोग्राम शुरू हुआ है और हम आपका साथ दे रहे हैं और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। इतने प्यार से हमेशा हाँ हमें फ़ोन करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं और कुछ लोगों से हम मिलते भी हैं, तो बस इतना प्यार आप बरसाते हैं, आप बरसाते रहें एक साल, दो साल, तीन साल और हमेशा के लिए ये जो प्रोग्राम है हमेशा जारी रखेंगे आप सबों के लिए। और कितने लोगों से दोस्ती हुई, कितने लोगों से कितनी सारी बातें हुई होती हैं, क्या कहें। सो अब थोड़ा सा मौसम हो जाए प्यार का, क्योंकि संगीत की महफिल है और रोमांस ना हो ऐसा क्यों हो नहीं सकता ना। और जब कहते हैं गाना गीत तो बस गज़ल भी आ जाती है, बस एक और गज़ल की मांग आई है तरह तहसीर साहब की आवाज़ में। अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। और गज़लों में जो शब्द होते हैं ना, जो फीलिंग्स होती हैं, वो और किसी कहीं नहीं मिलेगी। कभी एक छोटी सी मुस्कान हो, कभी किसी का इंतज़ार हो, या कभी बिना कहे किसी को समझ लेना, ये तो प्यार है। और कभी एक गीत सुनते ही किसी खास इंसान की याद आ जाना। तो जिनके दिल में आज भी कोई किसी खास का नाम धड़कता है, ये गीत शायद आपके लिए ही है। ये गज़ल जो है स्पेशली जाएगा बाबू अनातवा जी के लिए, जो अभी दुकान में है और वे कह रहे हैं उनका जो परिवार है वे गए हैं गंगा तालाब पूजा करने के लिए। बस हम सभी जो शिव भक्त हैं, जो सभी लोग श्रावण मास मना रहे हैं, गायत्री जी आपने भी कहा था कि मैसेज, वो आपका जो मैसेज है श्रोताओं के प्रति, तो हम बोल रहे हैं आप सभी को, जितने लोग गौमासिया की ओर जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, बस आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और भोले बाबा का आशीर्वाद सदा बनी रहे। सो बस बाबा अनतवा जी अपने पूरे परिवार के लिए ये गज़ल मांग रहे हैं, उनके जो परिवार हैं, फ्रेंड हैं, स्पेशली वाइफ उषा के लिए, बेटा है विदेश और बहू है भावना, और जितने लोग गजल के दीवाने हैं, बस ये हो जाए आप सबों के लिए। और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर

छुक गया आसमान इसमें ये प्यारा सा गाना सभी जब जब भी सरा बानू की बात आती है तो बस ये गाना हम कैसे मिस करें और आप कुछ लोग कह रहे हैं अजीब वाह आप 60s में कैसे चले गए आज सो बस हमने देखा कि आज सायरा बानू का बर्थडे हमने कहा तो कोई बात नहीं हम फिर से मेमोरीज रिवाइव करते हैं और उनके जो गाने हैं इतने प्यारे प्यारे हैं सो बस इसलिए हम चला रहे हैं उन पर पिक्चर आज कुछ गाने और साथ ही आपके जो रिक्वेस्ट हैं आपकी जो फरमाइशें हैं उनको भी नज़र डाल रहे हैं साथ ही आपके डेडिकेशंस अरे अभी अभी हरीश बाबू ने बताया कि जो जिस समय सायरा बानो जी ऑन स्क्रीन आई सो उस समय सभी लोग उनको कहते थे ब्यूटी क्वीन ऑफ बॉलीवुड क्योंकि वो इतनी सुंदर थी आज भी वो 80s शायद की हो गई होगी और आज भी इतनी ही खूबसूरत लगती हैं मगर आप सोचिए अपने जवानी में कैसे दिखती थी आपने तो देख ही लिया होगा उनकी मूवीज़ में सो हरीश बाबू वो कह रहे थे कि इस फिल्म में जो फिल्म थी आई मिलन की बेला उसमें रफ़ी साहब ने कितनी सुंदरता से बिल्कुल हू बहू जैसी है सायरा बानू वैसे ही शब्दों में बयान किया उनकी खूबसूरती को तो हरीश बाबू आपके लिए साथ में आपके खास अनु के लिए

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. जहाँ कश्मीर की कली सीता जी आप मांग रही हैं इस फिल्म का गाना पॉइंट लास्को से आप हमें याद कर रही हैं बस अपने सभी भाई बहनों के लिए सुहाती रामबुजन और लक्ष्मण फरिवास साथ में सभी लिसनर्स के लिए

जहाँ जितने लोग दुख हैं, दुखी में हमें याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और कोई है जिनको आपने खो दिया है, जैसे कि प्रेमिला जी है काटोबोन से, उन्होंने अपना निफ्यू को खोया है, अपने निफ्यू को. सो उनकी जो बहन है, हाँ जी, और साथ में है उनका जो निफ्यू है, उनकी जो पत्नी, साथ में है बेटा तुषार, यश, भाई, भाभी और सभी मौसियों की ओर से. सो उनको बहुत याद कर रहे हैं, और जितने लोग दुख में हैं हम आपके साथ हैं.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: साहिब मूवी का गाना है किशोर दा की आवाज में।

जहाँ खुशी हो या गम, क्या पता क्या हो, मगर जो भी हो हमें तो जीना ही है दोस्तों। बस ये गाना मनोज सोहन जी और वलिस फेरांस ट्रेबुशे उन्होंने मांग की है अपनी प्यारी सी पत्नी नाजिमा जी के लिए, साथ में है उनके जो परिवार हैं सभी सोहन परिवार के लिए, और सो हमेशा याद करते हैं गया सिंह आश्रम के निवासियों के लिए, जो बीमार लोग हैं घर पर हो या अस्पताल में हैं, जो बेसहारा हैं, जो अकेले हैं, हम सब आपके पास साथ हैं। और मनोज जी हमेशा आप सबों के लिए अपने दिल के मैं हमेशा आपको याद करते हैं, आपके लिए ढेर सारी जगह हैं उनके दिल में। सो बस बी सेफ बी हैप्पी आप जहाँ भी हो, और हम आपके साथ हैं।

आपको बताते चले कि इस गाने के बाद एक और गाना, इसके बाद 2 बजे, और 2 बजे के समाचार के बाद वी हैव द 90s वाला थीम जो है. अगर आप 90s वाले गाने पसंद करते हैं तो बस आप सुनिएगा ज़रूर 2 बजे के बाद.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जहाँ वैसे तो हमारे पास बहुत सी डेडिकेशंस हैं, रिक्वेस्ट हैं, मगर समय की कमी के कारण सभी जो गाने हम नहीं चला पाएंगे. आई एम सो सॉरी, आप जानते हैं कैसा होता है. सो बस हमें जो खुशी होती है कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी खुश हो कि हम आपको याद कर रहे हैं, आपके नाम भी बताएंगे अभी अभी. तो ये जग लगा पहला गाना है ना, लव लव लव मूवी का गाना है, और जो हमेशा लव लव लव होते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ के, वे हैं हमारे नवीन भाई ऑफ मोहता एम्ब्लॉन्श. सो मोहता एम्ब्लॉन्श के नवीन जी, आपके लिए ये गाना और सभी आपके फ्रेंड्स के लिए, और वैसे आशा जी के साथ होंगे विजय बेनेडिक्ट. और ये गाना हम खास तौर पर इसमें नाम जोड़ना चाहेंगे, गुड आफ्टरनून आपको भी बॉम्बू के आकाश चेतन मनसुख. और हाँ, आपको हमारे जो गाने पसंद आए, थैंक यू सो मच. और ये जो गाना है आपकी मामा प्रीति के लिए, पापा क्रिश, बोथ सिस्टर्स उर्वशी और विष्णी जीजू विनेश, निफ्यू केयान, नीस नविया और सभी मनसुख परिवार के लिए. साथ ही हम चलते हैं कहाँ पर, जी हाँ, तो हम चलते हैं ज्ञान बिहारी जी की ओर. हाँ ज्ञान बिहारी जी, नमस्कार. आपकी वाइफ सबिता के लिए, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव के लिए, सुनील रानी और सभी RM3 लिसनर्स के लिए ये गाना.

ट्रियोले के धीरज जी। राखी वाले जो गाने हैं वो कल से बहुत से प्रोग्राम्स में चलेंगे। सो टू एवरीवन, हम नहीं मिलेंगे राखी वाले दिन, तो बस सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं और वो गाने तो चलते रहेंगे। अभी के लिए धीरज जी आपके नाम करते हैं ये गाना, साथ में हूँ आपकी बहन खुशबू के लिए।

नाम जो होते हैं इसमें यहाँ पर है ललिता कुशल जी ऑफ थयोले सुदेवी के लिए छोटी ज्ञानी दीविना आत्माराम भैया प्रभावती मौसी शुक्लाल मौसी सुरेखा के लिए

0: कल एक गैरेज में काम करने के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सोयफू की मौत हो गई। वो बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। शुरुआती जांच के मुताबिक वो एक बस के नीचे मरम्मत कर रहे थे, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। उसका सिर बस के एक हिस्से और पिछले पहिए के बीच फंस गया। मौके पर पहुंची सामूहिक की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीतू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के मुताबिक गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई है। गैराज में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस हादसे के सही कारणों की जांच कर रही है। मॉरिशस में विकसित समुद्री टेक्निक अब अफ्रीकी देशों तक पहुंच रही है। मैहूर की इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड समुद्र के भीतर जांच के लिए विशेष ड्रोन और जहाजों की सतह पर जमा गंदगी साफ करने वाली मशीन तैयार कर रही है। इन उपकरणों को पूरी तरह मॉरिशस में ही बनाया गया और जोड़ा जाता है। पिछले 6 महीनों में इन्हें अफ्रीका के कई बंदरगाहों में भी भेजा जा रहा है। समुद्री खीरे यानी सी क्यूकम्बर को लेकर मॉरिशस में एक नया प्रयास आगे बढ़ रहा है। मकसद है समुद्र में इनकी संख्या बढ़ाना और ये देखना कि क्या भविष्य में इसका पालन एक कारोबार के रूप में किया जा सकता है। इसी परियोजना पर एल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर में चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के सहयोग से चल रही इस काम का मंत्री अरविंद बुलेल ने जायजा लिया। विदेश स्तर पर अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदे चाहने का आरोप लगाया है। व्यापार वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने कई कनाडा के सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है। जवाब में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे गलत फैसला बताते हुए 8 सितंबर से स्टील, डेयरी सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स पर बराबर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की डेजी रानी सिबन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 उनकी मां चिंता सिबलक के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। लामूस लेन नुवेल फ्रांस में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड के श्री करमवीर पूरन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें उदो के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उन्हीं के मकान नुवेल फ्रांस से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

30 घंटे में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। 2:10 हुए हैं। संडे का दिन है 23rd of August 2026। हाँ जी, 12 से दिव्यना है आपके संग सुहाना सफर प्रोग्राम में, और आज है स्पेशल लेजी संडे शो। और आप लोगों ने सदाबहार गानों का जो प्रोग्राम है उनका मजा लिया। अब है 90s और अर्ली 2000 के गाने, और उस आपने एक ऐसी आवाज़ सुनी कि लुट गए हम, लुट गए तो बस हम। दिल दे चुके सनम मूवी का गाना था, और साथ में आवाज़, कैसे भूलें उनको। वे आज इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनको कौन भूल पाया है। के और उस पर पिक्चराइज 2-3 गाने हम चलाने वाले हैं। कृष्ण कुमार कन्नट, पॉपुलरली नोन एज के, वे एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थे, और उनकी जो आवाज़ थी ना, भारी भरकम और हाई पिच पर वे गाते थे। और एक बार शो करते करते ही उनको हार्ट अटैक हुआ और वे इस दुनिया को छोड़ चले, मगर उनकी आवाज़ अभी तक बुलंद है। अभी तक वो सभी लोग उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं, उनके गाने भी। बस ये दो गाने उन पर, और साथ में आपके जो पसंदीदा गाने हैं आपने हमें बता दिया है। सो बस इस प्रोग्राम के इस अंश में होंगे कुछ स्वीट स्वीट 90s और अर्ली 2000s वाले गाने। सो बस हमारे साथ दीजिएगा आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और आपको बता देते हैं, बार बार बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है 25 अगस्त को हम मना रहे हैं फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हमारा जो चैनल है आरएम फ्री। सो बस हमारे ओजेस, हम सब ने सोचा क्यों ना आपके लिए आप के दर्शन हो जाए, हम आपके घर आ जाए टीवी सेट पर एमबीसी फ्री पर ट्यूजडे का मतलब है कि 25 अगस्त को रात्रि के 8:30 एमबीसी फ्री पर एक स्पेशल प्रोग्राम हमारे सभी कुछ ओजेस के साथ आप देख पाएंगे। कुछ नाच गाने साथ में, बहुत सारा फन होगा। बस मिलिएगा ज़रूर टीवी सेट पर। अभी के लिए बस चलते हैं कहाँ पर, के जी के साथ झनकार भी। इट्स टू आशिकी है।

जहाँ हो चुका है 2:22 सवहर के, संडे का दिन है और आप लोग आराम कर रहे होंगे, बस लंच के बाद टी टाइम होने वाला है और अपनों के साथ बहुत से लोग आज बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करने के लिए, कुछ लोग घर पर काम काज के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ करने को होता है संडे के दिन, और कुछ लोग आई एम श्योर सी साइड की ओर बढ़ रहे होंगे, बस लॉन्ग ड्राइव पर। तो आप जहाँ भी हो हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच दिल से। और एक अर्ज करते हैं, तुम मिले तो लगा जैसे दिल को अपनी जगह मिल गई, वरना ये दिल तो कब से तुमको ढूंढ रहा था, अब बस तुम हो और तुम्हारे साथ हर ख्वाब खूबसूरत लगता है। ऐ मेरे हमसफर, हम आपके साथ हैं, बस हमारी इस फीलिंग्स को भी आप याद कीजिए, कदर कीजिए। कयामत से कयामत तक इस गाने के शौकीन बहुत हैं और अमोंग ऑफ देम वी हैव हरीश बाबू, हमेशा ये गाना पसंद करते हैं। और जितने लोग प्यार में डूबे हुए हैं, चलते हैं 90s की ओर, स्वीट स्वीट 90s आप सबों के लिए 3 बजे तक।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जहाँ देखते देखते डुबकर 35 मिनट हो चुके हैं. बाप रे बाप, वक्त इतना भाग रहा है कि क्या कहें. सो बस अब डिंग डोंग डिंग बोले. ये था अमोंग द बेस्ट सॉन्ग ऑफ केके, और केके के साथ आवाज़ थी सुनिधि चौहान की. तो बस केके जहाँ भी हो, उनकी आवाज़ की गूंज हमेशा इस धरती पर गूंजती रहेगी. उनके गाने हमेशा हमारे कान को प्यार की बारिश होती रहेगी, और हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे. बस कुछ अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और आपको याद दिला देते हैं कि 3 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा. और अभी के लिए हीना फिल्म का गाना हो जाए. ये है एक स्वीट स्वीट सा मैसेज हम पढ़ते हैं. प्रणाम जी, प्रणाम आपको भी और फ्री टीम. थैंक यू. ये गाना फॉर हस्बैंड प्रकाश, उनकी वाइफ चांदनी की ओर से, बेटी है नेहा, बेटा विशाल, और सभी घीदारी फैमिली के लिए ऑफ कोर्स.

चंदनी पुरुषोत्तम आपके नाम ये करते हैं वो गाना जो आपने मांगा फिर कभी हम चलाते चलाएंगे अभी के लिए हमारे रिलीज में ये गाना है तो आपके नाम चलाते हैं और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो गाना मांगे क्योंकि अगर इतने लोग सभी लोग गाना मांगेंगे तो सभी के गाने हम चला नहीं पाएंगे ना तो बस बी कोऑपरेटिव और आपके नाम हम कर रहे हैं प्यारे प्यारे गाने आपके नाम भी ले रहे हैं आपको याद कर रहे हैं और ढेर सारा प्यार आपके नाम करते हैं

0: RM3 Radio.
1: कुणाल गंजावाला, उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि क्या कहें। तुम दूर हो मगर दिल में ये एहसास होता है, कोई है जो हर पल दिल के पास होता है। याद तो सब की आती है मगर, याद तो सब की आती है मगर, तुम्हारी याद का एहसास ही कुछ खास होता है। हर मंजर हर ओर तुम ही नजर आते हो। बस मैं हूँ देविना और आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम। और एक घंटे में 90s अर्ली 2000 के गाने हम याद करके गा रहे हैं एक साथ। पहला प्यार, पहली धड़कन, दोस्तों की मस्ती, बॉलीवुड का रोमांस और वो संगीत जिसे आज भी सुनकर दिल कहता है काश वो दौर फिर लौट आए। बस साजिद जी रोजिल से हमेशा साथ देते हैं, भागे भागे घर पर आ जाते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम होता है। थैंक यू साजिद जी, आपको आदाब है। और वे सभी दोस्तों के नाम स्पेशली कनाडा की सरोवर के लिए, सरोवर जी हेलो। सो बस ये गाना आपके लिए कुणाल गंजावाला की आवाज़ में, फिल्म है बाबुल।

ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती या प्यार निभाएंगे। बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर, तुम वहां से याद करना, हम यहां से मुस्कुराएंगे।

जहां 2:50 हो चुका है और प्रोग्राम में 10 मिनट बाकी है और आपने हमारा साथ इतना प्यार से दिया कि क्या कहें। वैसे कहते हैं ना, दौर बदलते हैं, फैशन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलते हैं, लेकिन अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता। 90s के गीत आज भी हमारे दिलों में इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उनमें सिर्फ आवाज़ नहीं थी, जज्बात थे। तो हमारी ओर से हमने रखा था एक बहुत ही सुंदर सा म्यूजिकल सफ़र और इसके साथ एक म्यूजिकल मुस्कान। आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर दीवना के साथ सुहाना सफ़र प्रोग्राम, जो अभी ख़त्म होने वाला है। और पुराने गीत पुराने नहीं होते, वो तो हमारी पुरानी यादों को नया कर देते हैं। मुस्कराते रहिए, संगीत सुनते रहिए और अपने दिल को हमेशा जवान रखिए। और हमारे बाद 3 के समाचार के बाद आज प्रताप सिंह प्रस्तुत करने वाले हैं ऐसा भी होता है प्रोग्राम, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। और आपको बता देते हैं, भूलिएगा मत, ट्यूसडे नाइट 8:30 रात्रि के आप देख पाएंगे हमारे ऑजेज हमारी ओर से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम, और हम मनाएंगे एक साथ द बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि एनिवर्सरी ऑफ हमारे जो आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन है, साथ में रेडियो मस्ती। सो बस फिर मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ अगले रविवार, नई कहानी और ढेर सारे खूबसूरत गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्यार और ढेर सारी संगीत भरी शुभकामनाएं आप सभी को, राखी की शुभकामनाएं भी, और साथ में हैव ए नाइस वीक डे अहेड। और आप को भेजते हैं ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय बाय।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेरा के साथ। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार रादा। पूर्वी अफ्रीका के मोमास्काल में कल एक गैरेज में काम के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सोइफू की मौत हो गई। वो बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। शुरुआती तहकीकात के मुताबिक वो एक बस के नीचे मुरम्मत कर रहे थे, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे आ गया। उनका सिर बस के एक हिस्से और पीछे पहिए के बीच फंस गया। स्थल पर पहुंची सैमी की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जितू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के मुताबिक गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। गैरेज में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस हादसे की सही वजहों की जांच कर रही है। मॉरिशस में बनी समुद्री टेक्निक अब अफ्रीकन देशों तक पहुंच रही है। मॉरिशस की इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड समुद्र के भीतर जांच के लिए खास ड्रोन्स और जहाजों की सतह पर जमी गंदगी साफ करने वाली मशीन बना रही है। इन उपकरणों को पूरी तरह मॉरिशस में ही तैयार किया जाता है। पिछले 6 महीनों से इन्हें अफ्रीका के कई बंदरगाहों पर भी भेजा जा रहा है। समुद्री खीरे यानी सी क्यूकम्बर की संख्या बढ़ाने के लिए मॉरिशस में एक नई पहल चल रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि भविष्य में इसका पालन आमदनी का जरिया बन सकता है या नहीं। इस योजना पर एल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर में चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों की मदद से चल रहे इस काम का मंत्री अरविंद बोलेल ने भी जायजा लिया। बच्चों और किशोरों की मन की स्थिति को समझने की ज़रूरत पर एक बार फिर जोर दिया जा रहा है। पुथोदो में 14 साल के एक किशोर से जुड़ा मामला और जिल किनिक गवर्नमेंट स्कूल में ग्रेड 6 की छात्रा के गिरने की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। दोनों मामलों की जांच जारी है। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। विदेश में अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर तनाव और बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदे चाहता है बिना उसका हिस्सा बने। दोनों देशों के बीच बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने कई कैनेडियन सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। जवाब में प्रधानमंत्री मॉकोनी ने 8 सितंबर से कई अमेरिकन सामानों पर भी उतना ही टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कोनी का कहना है कि दोनों मुल्क अब ट्रेड वॉर की स्थिति में है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: रीगा लेन लुउशे त्यागूज में 76 साल के 76 years old श्री गोबिन रीगा जो गाबी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे इनके घर रीगा लेन लुउशे त्यागूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टमोरो अथवा 10 AM रॉयल रोड बुबासे में 69 साल के 69 years old श्री आनंदा नौसू की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे एलियनसन बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाह की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
3: Continuous music.

0: ऐसा भी होता है ऑन RM3।
1: जब इंसान को भगवान नहीं समझ पाया तो इंसान इंसान को क्या समझेगा। आज का इंसान इंसान नहीं शैतान बनता जा रहा है। ना उसके दिल में दया है ना किसी के लिए रहम। आज का इंसान केवल अपनी मनमानी करता है, वो मतलबी बन गया है। इंसान सोचता है कि वो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही शक्तिशाली है। वो अपने आप को भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर समझता है। पर मूर्ख इंसान भूल जाता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर एक शक्ति है, परम सत्ता है, वो है भगवान। अगर इंसान अच्छा होता तो आज दुनिया में इतना खून खराबा नहीं होता, इतना लूट मार नहीं होता, इतना कोहराम नहीं होता। आज इंसान भरोसे के लायक ही नहीं रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन।

सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इन योर फेवरेट वीकली शो साप्ताहिक कार्यक्रम ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक घड़ी मिलाते चलिए इस समय मॉरिशस में शाम के 3:06 हो रहे हैं और अभी से लेकर 4 बजे तक हम आपको ले चलेंगे अद्भुत सनसनी खबरों की दुनिया में जहां कुछ ऐसी खबरें हम लाए हैं जिन्हें सुनकर आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है तो हम कहेंगे जी हाँ दुनिया में ऐसा भी होता है वेलकम सुस्वागतम

एक बच्चा चाहे जैसा भी क्यों ना हो, एक बच्चा मासूम होता है, नटखट होता है बच्चा, है कि नहीं? पर अगर एक बच्चे की मौत स्कूल में हो जाए तो सोचते मेरी बात है। प्रणय तेजा, ये उस लड़की का नाम है जिसकी मौत हुई 20 अगस्त साल 2026, इसी साल को 20 अगस्त को भारत के आंध्र प्रदेश के विश्वापट्टनम स्कूल में, और यह बच्चा 6 वर्ष का था। उसके परिवार के अनुसार उस दिन प्रणय तेजा जो है उतना ठीक नहीं था, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो स्कूल गया। वो अक्सर होमवर्क नहीं करता था और अध्यापिका उस पर चिल्लाती थी। उस दिन प्रणय ने अध्यापिका से मांग की कि आज मुझे मत मारना मिस, आज मुझे मत मारना, मैंने होमवर्क नहीं किया। अध्यापिका ने प्रणय तेजा को एक थप्पड़ लगाया और कुछ ही सेकंड बाद प्रणय तेजा बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। तुरंत ही उसकी मौत हो गई। सोचने वाली बात है कि यह जो बच्चा था कितना मासूम था। माना कि उसने होमवर्क नहीं किया, पर क्या टीचर को मालूम नहीं था कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, और टीचर ने उसे थप्पड़ दी मारा। सौभाग्यवश उस कक्षा में सीसीटीवी कैमरा था और उस कैमरा में सब रिकॉर्ड दर्ज है, ये वीडियो दर्ज है। जैसे ही अध्यापिका ने बच्चे को थप्पड़ लगाया, कुछ ही सेकंड बाद वह बच्चा गिर पड़ा। बच्चे के परिवार ने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी है। अब सवाल ये उठता है, क्या टीचर को नहीं पता था कि स्कूल में बच्चों को मारना मना है? क्या टीचर के भेजे में भूसा भरा था? अब बच्चे की मौत के बाद क्या होगा? टीचर का कार्य बिल्कुल बर्बाद, क्योंकि वह बच्चा डर के मारे, उसकी दिल की धड़कनें रुक गई, उसे हॉट आटा खाया, और जैसे ही वह बेहोश गिर गया उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की उसे जीवित करने के लिए, पर डॉक्टरों ने कहा कि भय के कारण उसके दिल की धड़कनें रुक गई। और ये जो केस है बहुत ही गंभीर केस है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मना है बच्चों को मारने के लिए। माना कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो टीचर कुछ और मतलब तरीका इस्तेमाल कर सकती थी बच्चे को समझाने के लिए, पर बच्चा वीडियो में बहुत डरा सा लगता है, सहमा सा लगता है, रो रो कर वह कई बार टीचर से कह रहे, टीचर मुझे मत मारना, आज मुझे मत मारना, मैंने होमवर्क नहीं किया। पर टीचर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और टीचर के कारण बच्चे की जान चली गई। कितना दर्द है ये एक माँ बाप के लिए। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और वहाँ पर बच्चे की मौत हो गई। सोचने वाली बात है दोस्तों, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, और जानकर भी कभी कभी कुछ लोग अनजान बनते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो शैक्षिक संस्थाएं बच्चों को मारना जो है मना है, इट इज़ नॉट अलाउड टू, बच्चे पर हाथ उठाना ये अलाउड नहीं है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। पर उस समय अध्यापिका के मन में क्या आया कि उसने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया और बच्चा तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। सो उस माँ बाप के बारे में सोचिए जिसका बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा जो है प्रणय तेजा, उसकी मौत हो गई, उसके माँ बाप पर क्या बीत रहा है अभी। भगवान प्रणय तेजा की आत्मा को शांति दे। बस सोचने वाली बात है दोस्तों कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ ऐसे कांड कर देते हैं जिसके बाद उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। अगर उस अध्यापिका का अपना बेटा होता, अगर उसका बच्चा जाता स्कूल में और कोई और अध्यापक या अध्यापिका उसके बच्चे को मारता और उसकी जान चली जाती, तो वो क्या करती? आप क्या करते दोस्तों अगर आप उस माँ बाप की जगह होते और कोई टीचर आपके बच्चे को मारता है और बच्चा को नुकसान हो जाता है, तो आप क्या करते?

इस बात पर चिंतन मनन कीजिएगा। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है कि कैसे अध्यापिका है ये जिसने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, ये जानते हुए भी कि स्कूल में बच्चों को मारना मना है।

आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये तो सभी लोग जानते हैं, पर कभी कभी टेक्नोलॉजी जो है इंसान को किसी का खून करने पर मजबूर भी कर सकता है। ऐसा एक केस आया है, एक लड़के का नाम है अर्जुन अरविंद, और ये मामला अमेरिका के मासाचुसेट राज्य के एक्टन शहर में अगस्त के महीने में हुआ है, जहां पर एक 17 वर्षीय नवयुवक अर्जुन ने अपनी माँ और छोटे भाई की हत्या कर दी है चैट जीपीटी को देखकर। घटना यूं घटी, 11 अगस्त 2026 को एक्टन स्थित परिवार के घर में अर्जुन की माँ सुधा वेंकटी सेन और छोटे भाई सिद्धार्थ अरविंद मृत पाए गए। पुलिस को परिवार के पिता के चिंता के बाद सूचना मिली, क्योंकि वे अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। एक चूतर भी घर में किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। पुलिस के अनुसार अर्जुन घटना के बाद अपनी माँ की कार लेकर घर से चला गया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और अगले दिन सुबह उसे वेलेन मासाचुसेट में कार के साथ पकड़ लिया गया। और अर्जुन पर बहुत सारे आरोप है, 2 मर्डर का आरोप, माँ और भाई के मर्डर, परिवार के सदस्य पर असोल्ट और बैटरी के आरोप, असोल्ट और बैटरी के अतिरिक्त आरोप, बिना अनुमति के वाहन इस्तेमाल करने का आरोप और मोटर व्हीकल थेफ्ट का आरोप लगाए गए हैं। अदालत में उसके पक्ष से नॉट गिल्टी प्लेयर दर्ज किया गया और उसे फिलहाल बिना बेल के हिरासत में रखा गया है। और चैट जीपीटी से जुड़ी बात ये है कि इस मामले ने विशेष ध्यान इसलिए भी आकर्षित किया है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर के अनुसार जांच में अर्जुन अरविंद ने इंटरनेट और एआई चैट बॉट उपयोग से जुड़ी ऐसी सामग्री मिली जिसमें उसने परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में खोज की थी। रिपोर्टों में चैट जीपीटी का उल्लेख है। यह महत्वपूर्ण है कि किसी एआई से ऐसी बातचीत होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसी ने अपराध करवाया। असल घटना और उसकी परिस्थितियां का निर्धारण पुलिस जांच तक अदालत के साक्षकों में होगा। और अर्जुन और उसके छोटे भाई दोनों एक्टन बॉक्सबोरो रीजनल स्कूल डिस्ट्रिक्ट से जुड़े थे। स्कूल प्रशासन ने घटना को परिवार, मित्रों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए अत्यंत दुखद बताया। अभी यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है, इसे अर्जुन को दोषी कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। फिर भी ऐसा सुनने में आया है कि चैट जीपीटी में यह लड़का बहुत व्यस्त था और चैट जीपीटी देख देख कर इसने अपनी माँ और भाई को मार डाला। सो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक डिसएडवांटेज अभी आपने दे सुना कि इस प्रकार यह जो बच्चा है अर्जुन अरविंद, 17 साल का नव युवक है, हिस्ट्री मायने, और उसने चैट जीपीटी पता नहीं क्या देखा और क्या सुना, और ये सब सुनते उसने अपनी माँ और भाई को मार डाला। छी, जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने कोख में पाला, उसी संसार में लाया, उसने उसी की जान ले ली। और जिस भाई के साथ वो बचपन से खेल कूद कर बड़ा हुआ, उसने अपने ही भाई की जान ले ली। वो कातिल है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, पर सुनने में आया है कि यह बच्चा जो है बहुत अच्छा लड़का था, पर पता नहीं इसके मन में क्या हुआ कि चैट जीपीटी को देकर इसने अपनी माँ और भाई को मार डाला। आप क्या सोचते हैं, क्या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है? ये इतना भी छोटा बच्चा भी तो नहीं है, 17 साल, और एक साल में वो अडल्ट हो जाता। क्या उसका दिमाग में क्या उसके दिमाग में क्या आ गया कि उसने माँ को मार डाला, भाई को मार डाला? कितनी शर्म की बात है कि आजकल के नौजवान जो है ऐसा काम कर रहे हैं। मैं सभी नौजवानों को नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसे नौजवान हैं जो केवल चैट जीपीटी देख देख कर पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। सो इंटरनेट का सही उपयोग करना चाहिए, अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो यही हाल होता है।

दोस्तों ये तो आपने सुना है कि हम देवता देवी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पर क्या आपको पता है कि मडागास्कर जैसा देश में भूत प्रेत की पूजा होती है? जी हाँ, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, जो मृतक लोग होते हैं, सो ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे तांत्रिक है जो ब्लैक मैजिक करते हैं और आत्मा से बात करते हैं और भूत प्रेत को बुलाते हैं। सोचने वाली बात है। वेल, ये जो है जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों में ये मान्यता है कि जो चला जाता है वो फिर से लौट कर आता है और उससे उनसे बातें करता है। सो ये लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जिस लोग को वो दफनाते हैं, उस एक सप्ताह बाद उस कब्र को तोड़ कर वो लोग उस स्केलेटन को निकालते हैं, फिर इसे सोना देते हैं, चांदी देते हैं, शराब प्रदान करते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से ये जो भूत प्रेत है ये उनकी रक्षा करेंगे। सोचने वाली बात है। अलग अलग परंपराएं अलग अलग देशों में, पर हम तो जानते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हम तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, देवता देवी की पूजा करते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

इस दुनिया में अद्भुत लोग हैं और क्या क्या कमाल कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक शख्स है जिसका नाम है बेटी ब्रोमाज। यस, और बेटी ब्रोमाज इंग्लैंड के चेटनहम की रहने वाली एक ब्रिटिश महिला है जिन्होंने बहुत अधिक उम्र में ही साहस और सक्रिय जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगस्त 2026 में 97 साल की आयु में उन्होंने अपना ही गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया और दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला विंग वॉकर बन गई। विंग वॉकिंग में व्यक्ति उड़ते हुए विमान के बाहरी हिस्से में विशेषकर उसके पंख पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ बंधा रहता है। यह एक अत्यंत जोखिमपूर्ण गतिविधि है जिसमें इसे प्रशिक्षित पेशेवरों और कठोर सुरक्षा अवस्थाओं में के साथ किया जाता है। और बेटी भोमाज ने पहली बार विंग वॉकिंग 80 वर्ष की आयु में किया था। फिर 2022 में साल 2022 में 93 साल की आयु में उन्होंने पहली बार उम्रदराज महिला विंग वॉकर का गिनेस रिकॉर्ड बनाया। फिर 4 अगस्त 2026 को 97 साल की आयु में 120 दिन में उन्होंने अपना छठा विंग वॉक पूरा कर लिया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड फिर से अपना नाम कर लिया। उड़ान के दौरान विमान में कुछ हवाई कर्तव्य भी थे और सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि इस उपलब्धि के लगभग एक साल पहले बेटी भोमाज को स्ट्रोक हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने फिर से अपनी पसंद की गतिविधि करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने यह प्रदर्शन चेटनहम जनरल हॉस्पिटल के स्ट्रोक यूनिट के

ये धन जुटाने के उद्देश्य से किया जहां उनका इलाज हो रहा था। बेटी भोमाश ने बताया कि उनकी दृष्टि कमजोर हो गई है और उन्हें गाड़ी चलाने में कठिनाई है, लेकिन वे उन कामों को करना चाहती है जो अभी उनके लिए संभव है। बेटी भोमाश की कहानी केवल एक विश्व रिकॉर्ड की कहानी नहीं है, यह दिखाती है कि उम्र बढ़ने के बावजूद नई रुचियां, उद्देश्य और सामाजिक योगदान बनाए रखना संभव है। उन्होंने विंग वॉकिंग तब शुरू किया जब अधिकांश लोग इस तरह की नई चुनौती लेने के बारे में सोच ही नहीं सकते। साल 2022 में उन्होंने चैरिटी के लिए विंग वॉकिंग करके $20,000 से अधिक जुटाए पैसे जुटाए थे और अन्य साहसिक फंडरेजिंग गतिविधियां की थी। इस कहानी का संदेश है, उम्र जीवन में सक्रिय रहने की इच्छा को अपने आप समाप्त नहीं करती, लेकिन इससे जोखिमपूर्ण कारनामे केवल प्रशिक्षित विशेषताओं की देखरेख और उचित सुरक्षा व्यवस्था में किया जा सकता है। सो यह नाम याद रखिएगा, बेटी भोमाश। बी टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर, BETY टाइप भोमाश, BROMAGE। सो आप देखिए किस प्रकार से बेटी भोमाश जो है अपने आप को एरोप्लेन की पंख में अपने आप को बांधे हुई है और उड़े जा रही है। भाई हमसे तो नहीं होगा। चलिए सुनते हैं अगला गाना। जी हाँ, फिल्म का नाम है क्या सुपर कूल है हम। हाँ

दोस्तों इस दुनिया में धनवान लोगों की कमी नहीं है, करोड़पति लोगों की कमी नहीं है। भारत ही में अगर आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी जी, हाँ, उनका जो अंटिलिया हाउस है, माय गुडनेस, देखने लायक है वो घर। और अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो टाइप कीजिएगा अंटिलिया, ANTILIA हाउस, लिव स्पेस हाउस, HOUSE, सो आप देख पाएंगे कि मुकेश अंबानी का ये घर कितना बड़ा, कितना आलीशान है। यस, अंटिलिया मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार का निजी निवास है और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और महंगा घर ये हो सकता है। इसमें लगभग 170 मीटर ऊंची है और इसमें 27 मंजिलें हैं। माय गॉड, और इसकी मंजिलों की ऊंचाई सामान्य इमारतों से काफ़ी अधिक है। इसलिए इसकी ऊंचाई लगभग 60 मंजिला इमारत जैसी बताई जाती है। और इसमें जो है कारों के लिए पार्किंग भी है, एलिवेटर भी है। इस घर में इमारत की 6 मंजिलें पार्किंग के लिए बनाई गई है और वहाँ लगभग 160 कारों के लिए जगह बताई जाती है। 3 हेलीपैड है अंटिलिया की छत पर, 3 हेलीपैड होने की जानकारी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और अन्य स्रोतों में दी गई है। और निजी थिएटर भी है घर में, लगभग 50 लोगों की क्षमता वाली निजी मूवी थिएटर जहाँ पर लोग बैठकर सिनेमा देख सकते हैं। क्या बात है।

इमारत में कई टेरेस हैंगिंग गार्डन्स है और इसकी वास्तुकला में प्राकृतिक तत्वों को ऊंची इमारत की डिज़ाइन के साथ जोड़ा गया है और रिपोर्टों के अनुसार एंटीरिया में स्विमिंग पूल, स्पा, हेल्थ केयर, योगा, डांस फैसिलिटीज सब कुछ है। यहाँ तक कि इसमें एक स्नो रूम भी है। सबसे असामान्य सुविधाओं में एक स्नो रूम है जहाँ कृत्रिम बर्फ के कण बनाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल आइस। माय गॉड, मुंबई के मार्ग की गर्म जलवायु से बिल्कुल अलग अनुभव। घर में एक मंदिर भी है और कमल और सूर्य से प्रेरित डिज़ाइन भी है। एंटीरिया के डिज़ाइन में कमल का फूल, लोटस और सूर्य, सन की आकृतियों, प्रकृति और प्रतीकों में मिल सकते हैं और यह घर अपने आप में एक मिसाल है। सो अगर आप YouTube पर जाएं तो टाइप कीजिएगा एंटीरिया हाउस और मिस्टर मुकेश अंबानी और आप देख पाएंगे कितने बड़े बड़े कमरे हैं और बहुत ही आलीशान बंगला है। काश हर किसी के पास इतना पैसा होता तो आप में से भी बहुत से लोग एक एंटीरिया हाउस बना पाते। कौन जाने, एक दिन आपकी भी किस्मत चमक जाए और आपको लॉटरी मिल जाए और आप भी ऐसा आलीशान घर बना पाएं।

लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, दोस्तों, इसी गीत के साथ ही अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। चार बजे आप सुनेंगे फ्लैश न्यूज़, के बाद डॉक्टर पूनम से फिल्मी गजलें प्रोग्राम आप सुन पाएंगे, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी, शाम के 3 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी आपकी मुलाकात हुई कल मंडे की रात को, रात के 9 बजे से 11 बजे तक रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर कार्यक्रम होगा भोजपुरी तड़का। सो अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, अजय प्रताप सिंह से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: नमस्कार संजय श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। पिछले काफ़ले के मू पास्काल में कल एक गैराज में काम के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सोइफू की मौत हो गई। वो बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। शुरुआती जांच के अनुसार वह एक बस के नीचे मरम्मत कर रहा था, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे आ गया। उनका सर बस के एक हिस्से और पिछले पहिए के बीच फंस गया। मौके पर पहुंची सैम्यू की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीतू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के अनुसार गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। मॉरिशस में विकसित समुद्री तकनीक अब अफ्रीकी देशों तक पहुंच रही है। मैगोश की इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड समुद्र के भीतर जांच के लिए विशेष ड्रोन और जहाजों की सतह पर जमा गंदगी साफ करने वाली मशीन तैयार कर रही है। इन उपकरणों को पूरी तरह मॉरिशस में ही बनाया और जोड़ा जाता है। पिछले 6 महीनों से इन्हें अफ्रीका के कई बंदरगाहों में भी भेजा जा रहा है। समुद्री खीरे यानी कि सी क्यूकम्बर को लेकर मॉरिशस में एक नया प्रयास आगे बढ़ रहा है। उद्देश्य है समुद्र में इनकी संख्या बढ़ाना और यह देखना कि भविष्य में इसका पालन एक कारोबार के रूप में किया जा सकता है। इसी परियोजना पर एल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के सहयोग से चल रहे इस काम का मंत्री अरविंद बुलेल ने भी जायजा लिया। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने कई कैनेडियन सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदे चाहता है लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है। जवाब में प्रधानमंत्री मैकॉने ने 8 सितंबर से कई अमेरिकन सामानों पर भी बरकरार टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अमेरिका और कनाडा अब ट्रेड वॉर की स्थिति में है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन

0: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 4:13 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं RM3 पर। मैं हूं आपके साथ पूनम। फिल्मी गजलों का साथ चल रहा है दोस्तों। रविवार की ये शाम जरा रुकिए, एक लम्हा बाहर देखिए। धूप थोड़ी नरम हो गई है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है और ऐसे में दिल चाहता है कोई गजल हो या कोई शेर हो, कोई बात हो जो अंदर तक छू जाए। दोस्तों आज की महफिल सजी है इश्क मोहब्बत के नाम, दर्द और मोहब्बत के साथ। वो इश्क जो पहली नज़र में होता है, वो मोहब्बत जो बरसों बाद भी ताज़ी रहती है, वह एहसास जो कहा नहीं जाता बस सिर्फ महसूस होता है। तो आज का ये 1 आवर सिर्फ आपके लिए, सिर्फ इस मोहब्बत के लिए जो आपके दिल में है। तो संभाल लीजिए अपने दिल को, फिल्मी गज़लें शुरू होती हैं यहाँ से।
1: RM3 Radio.

0: सर।
1: 4:20 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ, फिल्मी गजलों के साथ, और इस समय आपके साथ हूँ मैं पूनम। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका नाम है

0: शमशीर बद्र। लिखते हैं, उसे भूलना चाहा तो याद आ गया, उसे भूलना चाहा तो याद आ गया, उसे याद किया तो और करीब आ गया। ये दिल भी अजीब है मानता नहीं, ये दिल भी अजीब है मानता नहीं, जिसे छोड़ना चाहा वो और चाहिए हो गया। क्या बात है, कभी कभी आपने सोचा है किसी को भूलना चाह रहे हो और उसे कोशिश में वो इतना याद आ रहा हो। यही तो मोहब्बत का सबसे बड़ा जादू है, जितना दूर भागो इंसान उतना और उसे याद करता है और उसके करीब होना चाहता है।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:26 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ RM3 रेडियो मनोरंजन पर। अब बात करते हैं एक और ऐसे शायर की जिनका नाम है कतील शिफाई। दोस्तों जब अब बारी है एक ऐसे शायर की, कहते हैं जिन्होंने जब जब कुछ लिखा तो जहन में मिठास घुल गई, दिल के झरोखों में तुझको बिठा कर, ये गाना आपको याद है? जी हाँ, यह वही कतील साहब हैं। उन्होंने इश्क को इतनी सादगी से कहा कि हर दिल उनमें खुद को पहचान लेता है। लिखते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुम्हें इस दिल में ए महबूब हम पहचान लेते हैं। दोस्तों जब कोई सच में दिल में बस जाता है ना, तो उसकी आहट भी पहचान आती है, आंखें बंद हो तो भी दिल जानता है वो आ गया। यही तो मोहब्बत होती है।
0: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:33 हो चुके हैं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में हर तरफ हर जगह। बहुत ही खूबसूरत शायरी थी, बहुत खूबसूरत ये तराना था। इसे कहते हैं जब सीधा सुकून जो देता है दिल को, और दिल के साथ साथ कहते हैं एहसासों को फिर से जगा देता है। अब बात करते हैं एक ऐसी शायरा की जिनका नाम है अज़रा अब्बास। लिखती हैं, पुरानी तस्वीरें देखती हूँ जब लगता है वो वक्त कहीं रुका हुआ है। हम बदल गए हैं, ज़माना बदल गया है, पर उन लम्हों की खुशबू अभी भी बाकी है। दोस्तों, पुरानी यादें कभी पूरी तरीके से जाती ही नहीं, वो तस्वीरों में, पुराने गानों में, किसी खुशबू में अचानक से सामने आ जाती हैं। आज कोई पुरानी तस्वीर निकालिए और मुस्कुराइए, क्योंकि वो खुशबू आपके बिल्कुल आसपास होगी। और कोई, हम जब ये गज़लें चलाते हैं तो मुझे एहसास होता है कि आपके पास कई ऐसी बातें हैं, शायद वो इंसान आपके बीच में ही हो इस पल, पर फिर भी वो जो यादें हैं, जो पुरानी यादें आपने संजो के अपने दिल में रखी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से चल पड़ती हैं। इसी को कहते हैं वो प्यारी सी एहसास, वो ऐसे गज़लें, वो ऐसी शायरी जो आपको कहती है फिर से जिंदा हो।
0: RM3 Radio.

0: 4:41 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गज़लों के साथ। यहाँ पर हम वो वाले आपके लिए गज़लें चला रहे हैं जिससे आपकी शाम बहुत सुंदर हो, उन लोगों की याद आ जाए वापस जो बहुत समय से आपके सिर्फ दिल में कहीं छुपे बैठे हैं और हो सकता है आपके आस पास ना हो। एक बहुत ही प्यारी सी शायरा हुई है, उनका नाम था यास्मीन हमीद। लिखती हैं, तन्हाई में बैठकर सोचती हूँ कितने लोग थे कहाँ चले गए, तन्हाई में बैठकर सोचती हूँ कितने लोग थे कहाँ चले गए, वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं पर कुछ लोग दिल में रह जाते हैं। दोस्तों सच तो है, ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं पर कुछ ही साथ रहते हैं और जो रहते हैं वो सीधा दिल में रहते हैं। आज उस उन चंद लोगों को याद कीजिए जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं। हो सकता है कुछ स्कूल की फ्रेंड्स हों, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हों, कॉलेज के फ्रेंड्स हों, उनसे आपको मोहब्बत ना हो पर वो मोहब्बत हो एक जो दोस्तों में होती है, पर उनकी याद तो आती है। हो सकता है आपके परिवार वाले, वो कज़न्स जिनको बहुत समय से आपने देखा नहीं, जाना नहीं, किसी ने आपको आपका दिल तोड़ दिया हो, किसी ने आपको सही ना समझा हो, किसी ने आपने उन्हें समझाने की कोशिश की हो, उन्होंने आपकी फीलिंग्स को ना समझा हो और बस इतना ही कहा हो, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जब ये वाली एहसास होता है तब एहसास होता है कि कुछ चंद ही तो रह गए। हमारी लिस्ट में ज़्यादा लोग नहीं होते, बहुत कम होते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात कहते हैं, और जिससे दिल की बात कहते हैं शायद वही सिर्फ अपने होते हैं।
1: RM3 Radio.

0: गजल।
1: 4:47 हो चुके हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये गज़लें पसंद आ रही होंगी। ये सब आप ही की पसंद होती है और जिन शायरों ने लिखा या शायरों ने उसको बनाया, वो कहते हैं ना कि जब इस ऐसे माहौल क्रिएट हो जाता है जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो और ऐसी गज़लें चल रही हो, ऐसे प्रोग्राम चल रहा हो, तो दिल को सुकून होता है क्योंकि पूरे दिन की जो हमारी टेंशन्स होती हैं कहीं ना कहीं फुर हो जाती है। उनकी यादों में हमारा दिल चला जाता है, जहाँ जिनको याद बहुत टाइम से नहीं किया होता। काम की भाग दौड़ इतनी होती है, काम का कहते हैं ना कि काम इतना सर पे चढ़ के बोलता है कि मुझे करो मुझे करो, पर जब ये गज़लें चलती हैं तो वो जो बोझ होता है वो उतर जाता है, चाहे वो सर से, कांधों से या ज़िंदगी से। तो आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें भी बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है 5250620 पर। और अब बात करते हैं एक और शायर की। जी, हम बात करने जा रहे हैं शकीब जलाली की। बहुत कम लोग जानते हैं इनका नाम, पर जो जानते हैं वो कहते हैं कि इनकी शायरी दिल में उतर जाती है, निकलती ही नहीं। लिखते हैं, मुझे तोड़ा भी तुमने जोड़ा भी तुमने, मुझे तोड़ा भी तुमने जोड़ा भी तुमने, मेरी ज़िंदगी का हासिल तुम ही तुम हो, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ रहा। ये इश्क है या जंजीर, पर छोड़ना नहीं चाहता तुम्हें। कितना सुंदर लिखा है दोस्तों। ये ऐसा लगा है कि कोई एक इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाता है, तोड़े भी नहीं टूटता और जुड़े भी नहीं जुड़ता, और फिर भी उसके बिना ज़िंदगी की कल्पना ही नहीं हो सकती। यही तो होता है सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत। और उनमें से ऐसे ही वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास एक खुशबू की तरह से एहसास से जुड़े हुए होते हैं। तो ये अगली गज़ल आपको सुनने को मिलेगी नज़मा की आवाज़ में, बहुत ही सुंदर है, साथ में रहिए।
0: RM3 Radio.

0: होती यादें तो सिर्फ साथी होती हैं। और दोस्तों आज की इस महफिल में सबसे पहले मेरे साथ थे, मेरे से पहले थे प्रताप जी, और आपके साथ और आपका उन्होंने खूब दिल बहलाया होगा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे बाद आएंगी शीतल जी, उनका साथ भी ज़रूर दीजिएगा। अगले रविवार शाम 4 बजे फिर मिलूँगी, तब तक मुस्कुराते रहिए। ये थी फिल्मी गज़लें पूनम के साथ RM3 पर। शुक्रिया, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। ये आखिरी नज़्म आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक, शाम के 5 बज रहे हैं।
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
5: बीते हुए लम्हों की याद में, उन दिनों से जुड़ी कुछ कहानियों की याद में, कुछ अफसाने तो कुछ फसाने। एक अधूरे से मुलाकात हुई थी जिनसे, दहलीज फिल्म आई थी 1986 में। एक बेहद ही हसीन रोमांटिक, बहुत दर्द था इस फिल्म में। इस फिल्म के गीतों को, इस फिल्म की कहानी

को आज भी लोग देखना सुनना पसंद करते हैं। मखमली आवाज के शहंशाह भूपेंद्र सिंह और उनके साथ महेंद्र कपूर, ये दोनों आवाज बने जैकी श्रॉफ और राज बब्बर की आवाज। यादों की दहलीज से गुजरते हुए ये पहला नगमा उन प्यार करने वालों के नाम जिनकी मोहब्बत की कहानी या फिर एक अधूरी सी मुलाकात की याद में।

गीत और संगीत पुराने हो जाते हैं, लेकिन वही गाने हमारे नई प्रेम कहानियां सुना जाती हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सॉफ्ट रोमांस एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के बीच द विंटेज, द चार्म ऑफ अ ड्रीम गर्ल ऑफ द इंडियन सिनेमा। हे मामालिनी, वाकई इस फिल्म में, इस गाने में खासकर इनके खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। ये कहा गया है कि इस फिल्म में हेमा मालिनी के खूबसूरती को इतनी खासियत से दर्शाया गया, इतनी हसीन शायद ही किसी और फिल्म में दिखी हो। मुकेश और कंचन की आवाज गूंजी फिल्म धर्मात्मा में। कल्याण जी आनंद जी ने इस गाने को बड़ी खासियत से संगीत से सजाया और अल्फाज इंदिवर के रहे। द ग्रेट फिरोज खान के ओपोजिट हेमा मालिनी।

कुछ धड़कनों के आवाज़ को जुबां तक ले आते हैं, दिल को दिल के करीब ले आते हैं। ये मुलाकात तो बस एक बहाना है, जहां प्यार का सिलसिला पुराना है। जितेंद्र और बिंदिया गोस्वामी पर यह गाना फिचराइज हुआ था फिल्म रही 1979 के खानदान। खयाम जी ने इस खूबसूरत गाने को संगीत से सजाया।

प्यार इश्क मोहब्बत ये वो एहसास हैं और इंतजार की घड़ी कभी रुकती नहीं। प्यार मोहब्बत के जज्बात और संगीत के खूबसूरत कंपोजिशन फिल्म एतबार में पेश किया गया। आशा जी और भूपेंद्र सिंह की मखमली आवाज ने इस गाने को बड़ी खासियत से दर्शाया। मुकुल आनंद रहे इस फिल्म के डायरेक्टर, संगीतकार रहे द ग्रेट बप्पी लहरी। वफा के राह में घायल ये प्यार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।

कभी-कभी दिल के बाद जुबां पर आते नहीं, बस नजरों से बयां कर जाते हैं। उन दिनों की छोटी-छोटी कहानियां गीतों के जरिए पेश कर रहे हैं अखियों के झरोखों से। ये ऐसे फिल्म रहे जिनके गाने एकदम यूनिक रहे, एकदम प्रभावित कर गए, फीचरिंग रंजीता कौर और सचिन। फिल्म अखियों के झरोखों से एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा रही, ए मास्टरपीस। हेमलता ने इस गाने को पेश किया और संगीतकार रहे रविंद्र जैन।

न जाने कैसे कैसे कुछ एहसास दिल से निकल आते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या इसे हम प्यार इश्क मोहब्बत कहते हैं? इस खूबसूरत एहसास को हम बयां कैसे करें, जहां सवरने को जी चाहता है, मुस्कुराने को जी चाहता है। प्यार के इस खूबसूरत एहसास को नक्श लालपुरी ने कितनी खासियत से लिख दिया, खूबसूरत संगीत से सजा गए खयाम साहब ने। 1981 की एक फिल्म आई थी फीचरिंग राजेश खन्ना और हेमा मालिनी।

सवेरे वाली गाड़ी से देखो ये कौन आया, वीरानी दिल को सजाने। सुरेश वादकर ने इस गाने को पेश किया जहां उनके साथ अनुराधा पोटवाल भी मौजूद रही। सनी देओल और पूनम ढिल्लन के लिए इन दोनों ने प्लेबैक दिया। अल्फाज लिख गए मजरू सुल्तानपुरी ने 1986 के फिल्म सवेरे वाली गाड़ी से। देखो ये कौन आ गया।

1980 के दौर के महान कलाकारों में से एक आरडी बर्मन साहब ने इस गाने को बड़ी खासियत से संगीत से सजाया। अपने आप मुश्किलें दूर हो जाती हैं जब दिल से मिल जाते हैं दिल। हमेशा की तरह किशोर कुमार ने अपने आवाज के जरिए हर एक कैरेक्टर को कितने खासियत से पेश किया और हर एक एहसास को पेश करने में क्षमता रखते थे। आज किशोरदा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज जो कहते हैं एक अमर आवाज बन के रह गए। उस दौर में इस गाने के लिए उन्होंने प्लेबैक दिया विशाल आनंद के लिए। विशाल आनंद एक ऐसे कलाकार रहे जो कि बहुत कम फिल्मों में नजर आए, लेकिन अपना एक गहरा छाप छोड़ गए। उन्हें हम ज्यादा याद करते हैं फिल्म चलते चलते में। 4 अक्टूबर 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह गए।

किशोर कुमार एक मल्टी टैलेंटेड एक मल्टी फैसेटेड एक्टर और सिंगर रहे। उनकी खासियत ये थी कि हर एक कैरेक्टर को बड़ी आसानी से अपने आवाज में ढाल लेते थे। कुछ चार दशकों तक उन्होंने इस हिंदी सिनेमा पर राज किया, इस संगीत की दुनिया पर राज किया, लेकिन आज उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज हर गली में गूंजती है। इस दुनिया से चले गए लेकिन अपने पीछे अपनी आवाज और अपनी अदाकारी के छाप इस हिंदी सिनेमा पर हमेशा के लिए छोड़ गए। उनकी आवाज एक बार फिर गूंजी यादों की इन खूबसूरत गलियों में। एक फिल्म आई थी 1978

हिंदी सिनेमा से कई महान सिंगर जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी एक ऐसी आवाज गूंजने वाली है जिसमें इतनी खूबसूरत ठहराव और मखमली इनकी आवाज है। ये आवाज है यशुदास की। यशुदास ने गाया माना हो तुम बेहद हसी। कैफी आजमी के अल्फाज पर बप्पी लहरी ने संगीत दिया और ये गाना पिक्चराइज हुआ फिल्म टूटे खिलौने में शबाना आजमी और शेखर कुमार के लिए।

30 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 100% मॉरिशस में बनी उन तकनीकों और खोजों की जो आज मॉरिशस को उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक समुद्री उपकरणों के क्षेत्र में एक प्रमुख पहचान दिला रही है। मैगोज स्थित इमर्जेंट मैरिटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऐसे अंडरवाटर ड्रोन्स तैयार कर रही है जिनका उपयोग समुद्र के भीतर जांच के लिए किया जाता है। श्रावण मास के संदर्भ में देश के कई जगहों पर शिव जी का विशेष पूजन किया जा रहा है। इसी दौरान आज आवनी मूलम कावड़ी का त्योहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया गया। श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर गंगा तालाब में आज एक भूमि पूजा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण करना। विदेश स्तर पर कनाडियन प्रधानमंत्री ने कल नए अतिरिक्त टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका द्वारा उनके देश के खिलाफ शुरू किए गए व्यापार युद्ध के कड़े शब्दों में निंदा की। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जी हां बिल्कुल, आज हम शाम को ये बात करने जा रहे हैं कि 100% मॉरिशस में बनी उन तकनीकों और खोजों की, जी हां, जो आज मॉरिशस को उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक समुद्री उपकरणों के क्षेत्र

में एक प्रमुख पहचान दिला रही है। मेहूज स्थित इमर्जेंट मैरिटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऐसे अंडरवाटर ड्रोन तैयार कर रही है जिनका उपयोग समुद्र के भीतर जांच के लिए किया जाता है।

0: AI के लिए भी एक विशेष मशीन बनाई है। पिछले 6 महीनों से इन तकनीकों का निर्यात कई अफ्रीकी बंदरगाहों पर किया जा रहा है। शहजाद अली जुमन की रिपोर्ट पर आस्था गोबिन का विवरण।
1: मॉरिशस में बनी समुद्री तकनीक अब एक नई पहचान बना रही है। मेहूश की इस कार्यशाला में समुद्र के भीतर जांच करने वाले खास ड्रोन बनाए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल बंदरगाहों के ढांचे की जांच के लिए होता है। ये करीब 80 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। समुद्री तट के भीतर नेशनल कोस्ट गार्ड की मदद के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन की बनावट से लेकर बिजली और मशीन से जुड़े काम तक सब कुछ यहीं मॉरिशस में किया जाता है। इन्हें बनाने वाले शानी गरबरन के मुताबिक इग्लोन नाम का ये ड्रोन विदेश से आने वाले ऐसे ही ड्रोन जैसा काम करता है, लेकिन इसे बनाने की लागत करीब 10 गुना कम है। इस ड्रोन को खासतौर पर जहाजों की जांच के लिए बनाया गया है। इसकी बनावट इसे ज्यादा कारगर बनाती है। इसे परखने के बाद अब पोर्ट लुई और दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसी जांच के लिए गोताखोरों को समुद्र में उतरना पड़ता है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। इस तकनीक से ये खतरा कम होता है और गोताखोरों की सुरक्षा बढ़ती है। इस ड्रोन को शुरू में जहाजों के निचले हिस्से की जांच के लिए बनाया गया था। समय के साथ जहाज के नीचे कोई और छोटे समुद्री जीव जमा हो जाती है। इससे जहाज की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज की टीम ने केवल जांच तक खुद को सीमित नहीं किया है। अगला कदम था इसकी सफाई। इसके लिए 2 मशीनें तैयार की गई हैं। इससे कचरा वापस समुद्र में नहीं जाता और प्रदूषण का खतरा भी कम होता है। जहाज पर जमा समुद्री जीव दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हो सकते हैं, इसलिए सफाई के दौरान उन्हें मॉरिशस के समुद्र में छोड़ना ठीक नहीं है। हमारी मशीन गंदगी को खींचकर अपने अंदर जमा करती है। इसे मॉरिशस में ही बनाया गया है और परखा गया है, और अब इसका इस्तेमाल दूसरे देशों में भी हो रहा है। पिछले 6 महीनों से मॉरिशस में विकसित इन उपकरणों का इस्तेमाल अफ्रीका के कुछ बंदरगाहों में भी किया जा रहा है। यानी समुद्री टेक्निक के क्षेत्र में मॉरिशस का हुनर अब दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। मॉरिशस के पास इस सेक्टर में ज्ञान और हुनर है। हमने इसी हुनर को टेक्निक और कारोबार से जोड़ा है। हम अपने ड्रोन या मशीनें बेचते नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों में जाकर खुद अपनी सेवाएं देते हैं। इस तरह टेक्निक और उसे चलाने की जानकारी दोनों हमारे पास रहती है।
2: Nous pas vendre nos bandes massives, nous pas vendre nos drones, nous pas les personnes, tous drones là, mais nous implantons dans les autres pays que nous offrons le service.
1: ये बाजार भले ही सीमित हो, लेकिन संभावनाएं बड़ी हैं। ये दिखाता है कि समुद्री अर्थव्यवस्था के सेक्टर में मॉरिशस के पास अपनी टेक्निक विकसित करने और एक प्रमुख तकनीकी केंद्र के रूप में आगे बढ़ने की क्षमता है।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है, इस दौरान गंगा आरती और भगवान शिव का के जलाभिषेक का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। श्रावण मास में गंगा आरती केवल नदियों की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में रंग जाती है। आरती के समय डमरू, शंख और घंटों की ध्वनि के साथ वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस तेलुगु महासभा और मॉरिशस तमिल कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के मिले जुले सहयोग से पहली बार के लिए भव्य रूप से श्रावण उत्सव मनाया गया। ज्यादा विस्तार सुमेहरा अकबर अली के साथ।
3: सदा वसंतम हृदय रविंदे, अर्थात शिव सदा हमारे हृदय में निवास करें। ये पंक्ति शिव भक्ति का एक गहरा भाव सामने रखती है। शिव जी की उपासना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर अनुभव करने की भी बात करती है। मन में शांति, व्यवहार में संयम

0: जीवन में करुणा ये वे भाव हैं जिनसे शिव जी को अपने हृदय में स्थान देने का संदेश मिलता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने तथा उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनके भक्तों ने आध्यात्मिक वातावरण में कल गंगा तालाब में उनकी पूजा की। कुछ भक्तों ने कांवड़ यात्रा भी की। भोलेनाथ जी का पावन महीना श्रावण मास के अवसर पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए देश के चार कोनों से आए श्रद्धालुओं ने उनसे सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।
1: यहाँ पर बहुत ही शिवमय वातावरण छाई हुई है। शिव जी हमेशा सभी को अपने आंचल में बसाए, सभी को कृपा करके सभी का भला करें।
2: Profiter pour Jajut, viens faire puja ici, viens vivre sa positiveness ici là, sa chivne et vatavaran là, et l'autre même ça.
0: श्रावण मास केवल पूजा पाठ का महीना ही नहीं बल्कि आत्मसंयम सेवा और सद्भावना का संदेश भी देता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस तेलुगु महासभा और मॉरिशस तमिल कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के सहयोग से एक भव्य श्रावण मास उत्सव का आयोजन किया।
3: हम सभी लोग साथ में मिलकर पहली बार के लिए ये मना रहे हैं और हम दिखा रहे हैं हमारे नौजवानों को कि हो सकता है कि हमारा जो बोलने का हमारा भाषा अलग है, हमारा जड़ अलग है, लेकिन हम सभी लोग सनातनिस हैं। तो हमारे नौजवानों को हम ये सिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारा संस्कृति जो है, हमारा संस्कार जो है, ये लेकर आगे बढ़े, क्योंकि यही नौजवान हमारे कल का नया पीढ़ी है।
0: शिवमय वातावरण में विभिन्न संस्कृतियां दर्शाते हुए युवकों ने विशेष नृत्य एवं भजन कीर्तन किए।

0: कल इस कार्यक्रम का समापन गंगा महाआरती से हुआ।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर गंगा तालाब में आज एक भूमि पूजा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण करना। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रधान श्री भोजराज गोरबिन के अनुसार ये मंदिर अगले साल के महाशिवरात्रि पर्व से पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में। गंगा तालाब के किनारे पर 1100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर यह मंदिर बनाया जाएगा। इसी कारण श्रावण मास के संदर्भ में गंगा तालाब में एक भूमि पूजन किया गया।
2: हम लोग एक भूमि पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पर डिवाइन म्यूजियम में हम लोग एक मंदिर पंचमुख गणेश का मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदू परिवार है, पूजा शुरू करने से पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करती है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक गणेश मंदिर बनाने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है कि ये शिवरात्रि 2027 से पहले ये जो मंदिर है ये बन जाना चाहिए।
3: पृथ्वी की पूजा, क्योंकि पृथ्वी पर ही हम स्थापित हैं, पृथ्वी पर ही हम रहते हैं। और जब कोई नया निर्माण होता है, चाहे आप घर का निर्माण करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, कुछ भी है, तो क्योंकि भूमि में कई प्रकार के दोष होते हैं, उस दोष को समन करने के लिए भूमि में और भी कुछ कई चीज़ें होती हैं, वो सब को दूर करने के लिए पहले भूमि का पूजन किया जाता है और तब उसके बाद निर्माण होता है, चाहे आप अपने घर का कर रहे हो, मंदिर का कर रहे हो।
1: मैक्राना मोबाइल से निर्मित गणेश पंचमुख मूर्ति भारत से लाई जा रही है, जिसकी लंबाई 8 फुट की होगी। श्रावण मास के उपलक्ष्य पर गंगा तालाब में भक्तों की भीड़ है और शिवमय

0: वातावरण छाया हुआ है। इस मंदिर को लेकर भक्तों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
1: मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी शिव परिवार के सभी सदस्यों की मूर्ति है, तो गणेश जी तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए क्योंकि वे तो हमारे प्रथम देव हैं, और जब शिव जी है, पार्वती जी है, अभी तो शायद कार्तिकेय की भी मूर्ति डाला गया है, तो पंचमुखी है, तो ये सब हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है।
2: जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम गणेश का पूजा करते हैं तो हमको नोस में जाना पड़ता है। अभी गंगा तालाब में एक पंचमुख गणेश हो रहा है, तो जितने भी हमारे डिवोटीज, जितने भी हमारे भक्तगण, जितने भी हमारे परिवार आते हैं गंगा तालाब में पूजा करने के लिए, यहाँ पे एक गणेश पहली बार के लिए डाला जा रहा है, ये एक बड़ी बात है।
0: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन द्वारा एकत्र किए जाने वाले दान से ही गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण किया जाएगा। श्रावण मास के संदर्भ में गंगा तालाब में यहाँ पर विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया, जहाँ पर साल 2027 में गंगा तालाब की भूमि पर यहाँ पर एक गणेश पंचमुख मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कैमरामैन ऋषि सिरतन के साथ मैं हूँ अभी उदय, समाचार विभाग की ओर से। तमिल महीने आवनी में जब मूलम नक्षत्र दिखाई देता है तब आवनी मूलम कावड़ी का त्यौहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। श्रावण मास के दौरान इस रविवार को गंगा तालाब के सोमनाथ आध्यात्मिक मंदिर में यह पर्व श्रद्धा से मनाया गया। भक्तों ने अपनी कावड़ी लेकर एक जुलूस निकाला। हिंदू हाउस की ओर से इस जगह पर पहली बार ऐसा आयोजन किया गया था। स्निट बिजनेस मॉरिशस ने इस रविवार को अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर को खास बनाने के उद्देश्य से वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के तहत काम करने वाले इस निजी संस्थान ने शिक्षा के प्रति इस्लाम के दृष्टिकोण और उसके महत्व पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस स्मारक समारोह की शोभा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के मुख्य संरक्षक मौलाना शाह मोहम्मद अनस नूरानी सिद्दीकी की विशेष उपस्थिति ने बढ़ाई। फाहाकोनाई की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
3: इस साल SNIT बिजनेस स्कूल के कयाम के 25 साल पूरे हुए हैं। बेल विलेज में ये निजी इदारा नई नस्लों में तालीम तदरीस और अच्छी तरबियत के लिए मशहूर है। हम्माद अब्दुल्ला बताते हैं,
4: en IT et ensuite nous finissons avec aussi en business management avec une qualification britannique. Ça puis donne l'occasion à beaucoup de jeunes et de professionnels qui vont gagner l'occasion à l'université pour gagner un degré, même qu'ils sont dans une forme 5.
3: इस सालगिरह को मनाने के लिए SNIT बिजनेस स्कूल ने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सरपरस्त मौलाना शाह मोहम्मद अनस सिद्दीकी की हाजिरी में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया।
5: The main concept of the foundation of forming the SNIT was to educate the new generation with the new educations of technologies of most advancements which can be very much useful for them for their lifetime and future.
3: Educating humanity, the core affair of Islamic spaces and Alami Nurani philosophy is conference ka unwan raha. Jamiatul Ulama Mauritius ke sadr Maulana Harun Asen, Professor Abdul Khaliq aur Maulana Nurani Gulfi ne Hazrat Muhammad ke hawale se Islam mein ilm ki ahmiyat ko ujagar kiya. Is salgirah ke mauke par SNIT बिजनेस स्कूल ने पोर्टली के तलबा को समाजी मेयार के मद्देनजर वजीफे यानी स्कॉलरशिप दिए। इसके अलावा कुरान की तिलावत, नात पानी और दीगर प्रोग्राम किए गए।
0: और जैसा कि हम बता रहे थे कि तमिल महीने आवनी में जब मूलम नक्षत्र दिखाई देता है तब आवनी मूलम कावड़ी का त्यौहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर विवरण आस्था गोबिंद के साथ।

0: इस रविवार गंगा तालाब में आवनी मूलम कावरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। तमिल महीने आवनी में मूलम नक्षत्र के आने पर ये पर्व मनाया जाता है। इस बार इसका आयोजन श्रावण मास के दौरान हुआ। 10 दिनों के उपवास के बाद श्रद्धालु अपनी कावड़ी के साथ पेथ्रे से शोभा यात्रा में शामिल हुए। भगवान मुरुगन के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद पाना इस धार्मिक यात्रा का मुख्य भाव रहा।
1: Nous commençons avec nos carême pour le Jésus, pour un grand sacrifice. Et là, aujourd'hui, nous faisons la célébration. Nous prenons la possession, c'est aujourd'hui qu'on va dire.
2: Nous étudions nous, dans ce mois-là, nous guettons qui bonne qualité nous a et qui mauvaise qualité nous a. Et comment nous sommes capables de corriger nous pour amener nous vers plus bien dans la vie, plus devant.
3: श्रावण मास के पावन अवसर पर आज गंगा तालाब में न सिर्फ शिवमय वातावरण है। कहा जाता है कि आवानी मूलम जो है मूल नक्षत्र होता है, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार। और तो और आवानी जो है दक्षिण भारत में भी वहाँ पर ये कावेरी मने सभी में जो शत्रुता है उसको नाश करने के लिए, हमारे अंदर में जो द्वेष क्लेश है उसको नष्ट करने के लिए हेतु स्कंद महाराज कार्तिकेय स्वामी का पूजा की पूजा किया जाता है।
0: इस वर्ष पहली बार हिंदू हाउस की ओर से सोमनाथ स्पिरिचुअल मंदिर में इस पर्व का आयोजन किया गया।
4: C'est vraiment la richesse de nos cultures que nous pouvons trouver à Ganga Talab. C'est ça qui nous beauté et nous tous nous prier pour l'unité de nos pays, prospérité, la santé de nos pays. C'est ça nous motive, pour nos traditions vivantes, nous célébrer tout bien la prière.
0: पूजा अर्पण और भक्ति के साथ ये दिन आस्था और परंपरा को समर्पित रहा।
5: पिछले हफ्ते के मोंपास्काल में कल एक गैराज में काम के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सुईफू की मौत हो गई। वह बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। शुरुआती जांच के अनुसार वह एक बस के नीचे मरम्मत कर रहे थे, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे आ गया। उनका सिर बस के एक हिस्से और पिछले पहिए के बीच फंस गया। मौके पर पहुंची सैम्यू की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीटू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के अनुसार गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। गैराज में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और पुलिस हादसे के सही कारणों की जाँच कर रही है। एलबीओ फिशरीज रिसर्च सेंटर में गत शुक्रवार को समुद्री खीरा यानी कि सी क्यूकम्बर पालन परियोजना की प्रगति पर एक टेबल राउंड आयोजित की गई। इसके बाद मंत्री अरविंद बुल्लेल ने वहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की मदद से चलाया जा रहा ये कार्यक्रम समुद्री खीरे के स्टॉक को फिर से बढ़ाने और मॉरिशस में इसके एक व्यापारिक उद्योग के रूप में उभारने की संभावनाओं का आकलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। सागा ओनो की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
6: ये आवाज उस चीज से निकली है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाईवे के किनारे से इकट्ठा किए गए पुराने विज्ञापन वाले फ्लेक्स बैनर ये गावान के एक हिस्से का काम करता है। इकट्ठा करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद सबसे मुश्किल काम आता है, इस सामग्री को सही तरीके से खींचकर लगाना ताकि मनचाही आवाज पैदा हो सके। इस पर्यावरण के अनुकूल तरीके में बकरी की उस पारंपरिक खाल की जगह फ्लेक्स बैनर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आमतौर पर लकड़ी के घेरे पर खींच कर लगाया जाता है। हयान चमन कहते हैं, हमने देखा कि सड़क पर ये प्रदूषण फैलाता है, गतिविधि के बाद भी ये सड़क पर ही परा रहता है। हम इसे उठाकर लाते हैं, साफ करते हैं और गावान बनाते हैं। रेहान बीबी जोन कहते हैं, इसे एक बिजनेस भी बना सकते हैं क्योंकि ये सामग्री हर जगह मिल जाती है। बकरी की खाल में बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इससे अगर आज ऑर्डर करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर ये मिल जाता है।
5: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि कैनेडियन के प्रधानमंत्री ने कल नए अतिरिक्त टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका द्वारा उनके देश के खिलाफ शुरू किए गए

0: या पर युद्ध के कड़े शब्दों में निंदा की। ये बयान दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार वार्ता टूटने के बाद आया और जवाबी कार्रवाई के रूप में कनाडा भी 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील और डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहा है। बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 16 देशों से आए रोबोट्स को शामिल करने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ तकनीक की दुनिया की नवीनतम उपलब्धियों पर आधारित एक शानदार शो के साथ हुआ। और अंत में मौसम का हाल।
1: हमारे इलाके पर ऊंचे दबाव वाली हवाओं का असर है। आज रात को देश भर में आसमान साफ रहेगा। कल सुबह के दौरान केवल देश के पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू पर रह रहकर कुछ बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगी। रात को हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:59 पर, सूर्योदय 6:25 पर।

तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

अयोक समाचार सुनती हैं रॉयल रुद बुबासे में उनहत्तर साल की 69 years old की श्री अनंदा नर्सू जिन्हें सब लोग अनंदा के नाम से भी जानते थे और जो नंबर 33 सीएच अल्फ्रेड गली बुबासे के पूर्व निवासी थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी ताबूत कल दिन के 10 बजे लाशाबेल ऑन्डांट एलियनसोंस रॉयल रोड बुबासें से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए बुबासें स्थित एडवेंटिस जी सेट्सियम जो का गिरजाघर ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए बिगारा का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुमरो एट 10 AM केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की श्रीमती देसी रानी सिबन जिन्हें सब लोग आरती के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती चिंता सिबालक के घर केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 10:30 AM रिया लेन फाउंटेन नंबर 23 लियोशे तेरूश में रिगा लेन फाउंटेन नंबर 23 लियोशे तेरूश में 74 साल के 76 years old के श्री गोबिन रिगा जिन्हें सब लोग गाबी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर रिगा लेन फाउंटेन नंबर 23 लोशे तेरूश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM एवेन्यू पेड्रिक्स मोसेलमेंट सान सूसी मोंटाय ब्लांश में Avenue Pédrix, mot seulement sans souci, Montaille Blanche, mais 74 Salki, 76 years old, qui, Shrimati Mirabai Dundi, Shrimati

मीराबाई दुंदी, पैदाइशी नाम उर्पा और जिन्हें सब लोग सिवन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री सेवराम दुंदी के घर एवेन्यू पेड्रिक सा मोसलमान सन सुसी मोंटाई ब्लांच से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लांच की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM। रॉयल रोड काउची मिलिटिया में जो काउची मिलिटिया के टैक्सी स्टैंड के पास है, 93 साल के श्री रोहित पांचू जो मोका फ्लक जिला परिषद के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री सुगा पांचू के घर रोयरुद काउची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल्मे काउची मिलिटिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सेबे की ओर से दो विज्ञप्तियां सुनिए। रोशब्रुन के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है। रोशब्रुन एवेन्यू, एवेन्यू रोशब्रुन, एवेन्यू नेओन, एवेन्यू वारियन, एवेन्यू प्लूटो के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 24 अगस्त 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेबी ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि जैसे ही ये मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे, बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी वाक्वा के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती हैं, विलबी रोड, डेकन रोड का एक भाग, ब्रिटानिया रोड, सुफलोक रोड और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 24 अगस्त 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेबी ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि जैसे ही ये मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे, तैसे ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी अपने ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के कारण क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी दो व्यक्तियां सेबी की ओर से।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सोमवार 24 अगस्त को श्रावण मास महोत्सव के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में कॉटेज राजपूत सभा शाखा नंबर 20 महायज्ञ का आयोजन कर रहा है, जो होगी शाम के 4 बजे राजपूत भवन भारती रोड कॉटेज में।

6:33 हुए हैं दोस्तों, नमस्कार आप सबको, कैसे हैं आप? आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। जी हाँ, मैं हूँ उषा कौर यहाँ पर, और आज रविवार 23 अगस्त 2026, और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। हर रविवार की तरह हम आपका साथ देंगे और ये कार्यक्रम चलेगा 7 से 9 बजे तक। भूलेगा नहीं आपका मनपसंद प्रोग्राम, रोमांटिक प्रोग्राम दिलों की आवाज़। तो चले कुछ भावगीत आप लोगों के नाम हम करते हैं, और यहाँ पर अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में

0: RM3 Radio.
1: हम मिले या ना मिले लेकिन यहाँ पर सुर ताल हम मिलाते ही चलेंगे सात सुरों के संगम से अलका जी की आवाज में आशिक आवारा फिल्म से लिया गया

जहाँ दोस्तों जिंदगी भी कितनी खूबसूरत है, कभी मंजिलें, कभी सफ़र, कभी हंसना है, कभी रोना है, हर मोड़ अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। कभी मंजिल मिलने की खुशी होती है, कभी सफ़र हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, कभी हंसी दिल को हल्का कर देती है और कभी आंसू दिल का बोझ कम कर देते हैं। तो आज इस खूबसूरत सफ़र में आप लोग साथ दे रहे हैं। जी हाँ, नई सोच कार्यक्रम यही समाप्त हो चला, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन पाएंगे।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ दोस्तों, 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। अगर आप लोगों ने रेडियो को ऑन किया है अभी अभी तो आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। आज रविवार खूबसूरत दिन है और कई लोगों ने बहुत ही रिलैक्स किया है, घर की साफ सफाई की है या फिर शॉपिंग की है। अब रिलैक्स करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, 9 बजे तक हम साथ देंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। 80s और 90s के गाने, जी हाँ, रोमांटिक शाम सिर्फ ढलती हुई रोशनी का नाम नहीं है दोस्तों। ये वो वक्त है जब दिल थोड़ा और खामोश और एहसास थोड़े गहरे हो जाते हैं, और कभी किसी की मुस्कुराहट याद आती है, कभी कोई अधूरी सी बात, और कभी बस दिल चाहता है कि ये शाम यूं ही ठहरी रहे। तो आइए आज की इस हसीन शाम को मोहब्बत का नाम करते हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, कुछ दिल से निकली बातों के साथ। और आप फ़ोन कर सकते हैं 1402-8070 पर और मैसेजेस आप कर सकते हैं 1525-06200।

चलिए दोस्तों 7:10 हुए हैं और आज की पहली फरमाइश रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा, गाना खास कर उनके लिए और सभी लोगों के लिए जो साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में अक्षय और रीना जो रहती है बासा रोड का ट्रबोन। जी हाँ, आपके नाम जाता है ये अगला गाना।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और बिना कुछ कहे दिल में अपनी एक जगह बना लेते हैं और फिर कभी वक्त उन्हें हमसे दूर ले जाता है। आज जाने की जिद ना करो, जैसे अल्फाज उन्हीं खूबसूरत लम्हों की याद दिलाते हैं जब दिल चाहता है कि वक्त थोड़ा ठहर जाए, बातें थोड़ी और हो जाए और शाम कुछ पल और हसीन बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं मगर उनकी यादें बहुत लंबी, और कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी याद जो है ना दिल में रह जाती है हमेशा के लिए। चलिए यादों से जुड़े हुए

कुछ खूबसूरत पल आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं बप्पी लहरी अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में। थानेदार फिल्म से लिया गया और ये गाना जाएगा विवेक के लिए जो रहती है क्यूपिप और इस समय हमें सुन रहे हैं साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: दिलों की आवाज प्रोग्राम है जी हाँ और आप सुन रहे हैं ऑन ऑरएम फ्री रेडियो रेडियो मनोरंजन साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद और हमेशा की तरह जी हाँ हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं अगर आप घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं रेडियो सुनते समय आप देखना भी चाहते हैं तो आप हमारे पेज हमारा जो पेज है ऑरएम फ्री रेडियो रेडियो मनोरंजन पर आप जा सकते हैं हमें देख सकते हैं और डेडिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पर हम गाना चलाएंगे जय के लिए जी हाँ जय भाई हमेशा की तरह वो साथ देते हैं हाय हेलो आपको मीठा हेलो जितेंद्र ढुलवा नमस्ते आपको जाद जो है जुड़ चुके हैं राकेश जाजू गाना वो मांग रहे हैं शर्वी और प्रीति के लिए और सायरा बानू आज उनका जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे टू यू सायरा बानू जी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए इंदिरा जी हाँ जी आप कैसे हैं हम तो बिल्कुल ठीक है और गाना आप खास मांग रहे हैं राजेश उगा और साथ में प्रकाश के लिए सुदेवी जी हैं हेलो टू यू और नीलिमा लवली प्रोग्राम थैंक यू सो मच और द बॉस के लिए जी हाँ जो जुड़ चुका है आपके नाम पे गाना जाएगा और साथ में गिरीश हरलोल ये गाना जाता है आपके नाम को और सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। जहां दोस्तों यहां पर हमारी प्यारी प्रभा जी है, गाना वो मांग रही है अपने दोस्त अनुष्का के लिए, और इस समय वो लोग काम कर रहे हैं। तो बो कुराज आपको, और हमेशा आप जीवन में तरक्की करें। और यहाँ पर स्वर्णल तिलक जी, हाँ स्वर्णल जी आप हमें सुन रहे हैं और गाना आप खास मांग रहे हैं भाषरावन, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान और नाव्या के लिए, और सब तिलक फैमिली के लिए भी अगला गाना जाएगा। और साथ में यहाँ पर हमें देख रहे हैं फ्रॉम लाइव टिकटॉक, हम आपको कैसे बोल सकते हैं, गावू रितेश जी, हाँ आप हैं, और गाना खासकर अपने तीन भाइयों के लिए शिरीष जो है गाना मांग रहे हैं, अपने हस्बैंड निवेश और भाई अनुज के लिए। और साथ में यहाँ पर गाना हम चलाएंगे विनेसन और नीरेला के लिए, नंदा आपादू आपके नाम भी गाना जाता है, सिमरन, रोमिता गुजा नमस्ते आपको, अजमेर खान और रवि है जी, हाँ हैप्पी संडे टू यू टू, कोको कुछ ऐसे नाम होते हैं क्या करें, यश आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे, दीप्ति गंधावरी आपके लिए नेक्स्ट सॉन्ग, और फ्रॉम सीटोहल पूरे सीटोहल फैमिली के लिए फ्रॉम रोश, और अभिषेक शर्मा आपके नाम जाता है, मीता जो है गाना वो मांग रही है अपने भाइयों के लिए, नाम है संजय, अजय, दीपक, राणा, सुनील और कोवल फैमिली के लिए जी, हाँ मोहरा का ये खूबसूरत गीत पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में। और साथ में है आप है फ्रॉम इंग्लैंड लेकिन नाम आपने तो नहीं बोला केविन के लिए, यस वो केविन, अलेक्जेंडर, अच्छा माधुरी जी हेलो टू यू, यश है जी हाँ यश फ्रॉम इंग्लैंड,

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: जी हाँ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 7:52 हुए हैं और यहाँ पर चांदनी पुरुषोत्तम जी आपके लिए जाता है अगला गाना और साथ में अभिषेक शर्मा जो कॉन्डोस हॉस्पिटल में काम करती हैं किचन टीम के लिए वो गाना मांग रहे हैं। तो चलिए आपको हम कहते हैं बो कुराज और साथ में केविन के लिए, जी हाँ केविन के नाम माधुरी आपके नाम जाता है अगला गाना, प्यारा अंशु जो जुड़ चुका है आपके लिए भी और साथ में आयशा थैंक यू फॉर जॉइनिंग, रोजी जो है गाना मांग रही है अपने दो भाइयों के लिए लेकिन आपने एक ही का नाम बताया है और वो है आयान, तो आयान के लिए गाना हम चलाएंगे और साथ में यहाँ पर परी है, हेलो परी हाउ आर यू, और आश जो है हमेशा की तरह प्यारी विक्षा और विदिशा के लिए

गाना मांग रही है जय वीना आपके लिए और राव रितेश है आपके नाम जाता है गाना और साथ में आपके भाई आशीष किरण और भैया बालकन राव के लिए रोशन भैर आपके नाम वीना जी हेलो टू यू क्रिश मोहनो पुट अ सॉन्ग फॉर माय फियांसे पहली नजर ओके आई विल ट्राई और नंदा मेकेन नमस्ते टू यू ललिता जी हाँ आप ललिता बाबूलाल है फ्रॉम वाक्वा हाय

रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों, जैसे समय जल्दी जल्दी भागा जा रहा है और यहाँ पर एक और पूरा घंटा आपके साथ हम बिताएंगे और यहाँ पर आरएम फ्री रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। साथ देने के लिए थैंक यू। और गाना जाएगा नंदा मेकन के लिए, नमस्ते आपको, और साथ में गुलशन भोला आपके नाम भी हम ये अगला गाना, और साथ में है कृष मोहन, गाना मांग रहे हैं अपने मंगेतर के लिए ललिता जी फ्रॉम वाक्वा। क्रिस जो है गाना मांग रही है अपने पति सुभाष के लिए, और साथ में वीना रोशन गुडा के लिए, और अंजल जो है सेल्विना सोमिनाडन फ्रॉम अमोही आप गाना मांग रही है अपनी प्यारी दो बेटियां के लिए, जी हाँ विक्ष तारू और जेनिता आपके नाम, दाहिना जो है अपने हस्बैंड जय के लिए, शारदा लखनोट हाउ आर यू डियर, खतिबा मोंगो अस्सलाम वालेकुम सलाम आपको, जन्मदिन की सालगिरह मुबारक हो आपके आपकी बहन को, जी हाँ, और देविका किसनामा, और साथ में ये अगला गाना बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग फॉर समवन वेरी वेरी स्पेशल जो हमेशा इस प्रोग्राम को सुनते हैं देखते हैं, और वो है मोहम्मद साहब के लिए। सो होप यू विल एंजॉय दिस वन आतिफ असलम की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:07 हुए हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर आईना फिल्म से लिया गया 90s के चाहने वालों के लिए और गाना खासकर गुलशन भोला के लिए। आप हमें सुन रहे हैं और गाना लवली एंजल आयशा और मामा प्रभा और बहन दीक्षिता और पूरे भोला फैमिली के लिए। संजना तथा हम आपके नाम हम अगला गाना पेश करते हैं। मीनाक्षी हेलो टू यू, विशा हेलो टू यू, दिनेश गोपी हाय, प्रिंस नमस्ते आपको प्रिंस, और यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए जो श्रावण मास का व्रत रख रहे हैं और पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो आपको भी हम याद करते हैं। फिल्म का नाम है आईना, लता जी की प्यारी आवाज़ में। कहते हैं ना वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन 90s तक उन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं जो आज भी दिल में बसा हुआ है।

0: दिलों की आवाज की आवाज की
1: आवाज चले दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। ये बहुत ही प्यारा गाना आप लोगों ने सुना, लेकिन दर्द भरा गीत। ये रात खुश नसीब है जो अपनी चांद को गले से लगा कर सोते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्यार में बदनसीब होते हैं। हर कोई लकी नहीं होता, लेकिन फिर भी जिनका कोई नहीं होता है ना, भगवान उनका है। और यहाँ पर 80s का ये खूबसूरत गाना हम चलाएंगे, नाजिया हसन का ये प्यारा सा गीत। मूड को थोड़ा हम चेंज करेंगे और गाना खास कर लिया के लिए। लीना जी नमस्ते आपको।

को राजीव आरजे आपके लिए, उष जो है और साथ में एंजल एम आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे। जामल तेज सुनातन है गाना, वो मांग रहे हैं अपने लिए और वी रोशनी के लिए भी। हिमेश रेशमिया क्या बात है, वेलकम टू यू। और सान है जेम्स नोबिन, ब्रिंदा लक्ष्मण, और साथ में तायक के रहने वाले रफिक मोहित जी आपके लिए गाना।

0: दिलों की आवाज।
1: यह दोस्तों इस दुनिया में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। हम यहाँ पर सब मेहमान बन के आए हैं, एक दिन चले जाना है ना। और जियो और जीने दो, यही जिंदगी है। और यहाँ पर हमारी प्यारी दिल वंटी सनातन जी जो हमें सुन रही है, आपके लिए अगला गाना और साथ में चांदनी हरी राम हेलो टू यू। रवि जो है गाना खास कर मांग रहे हैं अपने लिए। जी हाँ, बचपन की याद आ गई है। जी हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ में शैलेंदर गिल जो जुड़ चुका है, मिंटा आपके नाम, और आवी जो है गाना मांग रहे हैं, बीवी वर्षा और बेटे लविकेश और प्रणव के नाम, राम भाजी जो रहती है विलनवा, गाना खास कर आ जाए के लिए कवि ईशा, पीटिया फैमिली ऑफ प्लेन बुआ, और रितेश जी गाना मांग रहे हैं अपनी बीवी विद्या और बेटी चेलिना, कुमार तिलक आपके नाम, संजय कुमार आपके लिए, और रेहाना के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम फिनिक्स, आपके लिए भी गाना जाता है। 8:26 हुए हैं और जितना लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, काम कर रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको भी हम याद करते हैं। तेरा मेरा गाना आपके नाम।

0: दिलों की आवाज़।
1: ये तो सही है कि हम यहाँ पर सब अजनबी हैं, लेकिन एक दूसरे से हम प्यार कर सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं।

हमेशा की तरह हम प्यार बांटेंगे और आप लोग सुन रहे हैं ढीरों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन आरएम फ्री रेडियो रेडियो मनोरंजन। 8:32 हुए हैं और अमला अनुंडा आज उनके बेटे लोगन का जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे टू हिम। और मालिनी जी एस आपके लिए सुनीर बिरवार आपके नाम जाता है अगला गाना। और जैसे कि हमने कहा कभी 80s और कभी 90s की खूबसूरत तराने आपके नाम हम करते हैं, बस उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज। चलिए दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम समाप्त होने को है और गाना हम चलाएंगे कावी कावी सन के लिए, आपके लिए रिशान, माया रामधनी आपके लिए, रसिका जी हाँ, द्रविन, हमारी प्यारी और जगनीशा जो हमें देख रही है, सुन भी रही है, थैंक्स टू यू। और साथ में नेरी है, नेरी

आपके लिए शामा राजा सिसंको नमस्ते आपको श्रेया मधु हाय और खास गाना हम चलाएंगे अमृता जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम क्यूपिप और साथ में अनीता जी हैं वो रहती है फिकॉफ्लाक आपके नाम गाना जाएगा दिल कितना नादान है दोस्तों कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है प्यार हो रहा है दर्द हो रहा है खुशी के आंसू निकले पता ही नहीं क्या होता है

0: RL3 Radio.
1: आंखों ने तुम्हारी प्यारी बातों ने क्या कह दिया है. यहाँ पर गाना खासकर दागिन श्वेता रवेश प्रिशा लव शाह और अपाडू फैमिली के लिए जो रहते हैं ओशनवा.

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:11 होकर बाश्रोता लोग भोजपुरी तड़का में तो लोग के हृदय से स्वागत बाते रेडियो के ता दीवाना हवा जा ता हम संगीत के मस्तानी है ता चला दीवाना मस्ताना होके संगे ई प्रोग्राम के अंत रहब जा और पहल का गाना चला दे के पहले याद दिला दे नंबर वा घुमावा 402-80-85 और मैसेज भेज सकब जा ऑन 5251700 5 एंड सेट 005

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 9:22 हो गल बाशोटा लोग जब तो हर रेडियो पर सुंदर सुंदर भोजपुरी के गीतवन चले ला तो बोले बोला कैसे लगे गला गिला है तो यही है भोजपुरी तड़का तो हर अपन कार्यक्रम जेकर बिना तो रात्रि फीका हो जाला जेकर से रात्रि बेहतरीन हो जाला और कलाकार लोगन के हमनी के प्रणाम ओह लोग के गाना तो लोग के नाम भोजपुरी बोला और सुना जा सुबह शाम बस दुनिया बन जाए तोहर काम चला अगला गीत कुणाल हिरीलाल के गावल गीत और गाना संगीता जी खातिर जन रहिला वाक्वा और गाना मांगत अवन जा पति देवन खातिर और बेटा केशव
3: जलसा

0: रात के 9:35 हो गल बा और चला भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के गावल गीत और गाना जाएगा रोहित जी खातिर जन हमने के सुनता बोबासा से और साथ में अमृता जी जन रही राफी का फ्लाक एकर खातिर और जितना कोई इबखत काम करता एकर खातिर भी
1: ए दादी कहां जाला वो देखो कौन चिकने बिस्कुट केकर हो

चाल बेटी खरे का भल हो बड़ी दुख बेटा नटलक नहीं हो तब बहु मर रख नहीं हो

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:27 हो गल बा श्रोता लोग संसयाने लोग ने बोल के चल गए लेन। समय सब के सबसे बलवान है। समय का सम्मान करबा तो बहुत तरक्की करबा जा, पर समय के मूल्य नहीं जानबा तो तोहर कल्याण बिल्कुल ना होए, है ना। और यहाँ पर ही हमने के सुनता बुबासा से कल्याणी जी और गाना मांगा तवन जा अपन खातिर और अपन का परिवार खातिर। और देव साहब जोंद रहिला मॉडल बेया गाना एकर खातिर और बच्चे लोग खातिर जो घर पर बा अभी। और ये कार्यक्रम सुना तवन जा चला भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के गावल गीत तो हलो खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10 बजकर 13 मिनट हो गल बा श्रोता लोग हमेशा प्रार्थना करेला कि ईश्वर हमनी के बहुत कुछ दे पर तो लोग साथ साथ ये भी कामना करिया जाके झूठ से बचाए के और उस सत्य के तरफ बढ़ाए के आशीर्वाद तोरा प्राप्त होई।
0: भोजपुरी तड़का

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के सारे दस बचकल बा नया जमाना हो या फिर पुराना एक बात निश्चित है कि जोन करबा वही पाईबा जैसे करनी वैसे भरनी सोच समझ के कदम उठाया ताकि बाद में पछताए के ना परी तो चलो छोटा लोग अगला गीत खाले पीले जिले भैया जिंदगी में काबा नेक काम करी जा और अगला गीत देवन जी खातिर जन रही मेबर्ग और ये बखत हमने के सुनाता गाना एकर खातिर एक धर्म पत्नी सुनीता खातिर और सभी परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: श्रोता लोग हमने के देश में जो एकता है वो तो बहुत सराहनीय है। एकता में बल है, शक्ति है। परिवार में एकता हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाला। और वो सचमुच सब लोगन बोले लंजा कि हमने के देश तो स्वर्ग से कम नहीं है। तो चला अगला गीत।

कृष्ण ओखज के गावल गीत और गाना सावित्री जी खातिर जन रहेला पॉपलमुस और इबखत हमने के सुबह सुनाता और गाना मांगता वंजा अपन दोस्त मीला खातिर जो कॉन्डोस हॉस्पिटल में काम कराता वंजा तो बो कुराज और संगे शोभा जी जन रहेला गांबे तो हर खातिर

श्रोता लोग गते गते हमनी प्रोग्राम के अंत तक आ गए लिहा प्यार से साथ देला जा एकर खातिर बहुत धन्यवाद बहुत जल्दी तोहर सेवा में उपस्थित हो शुभ रात्रि और नमस्कार

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस पर शुरू हो चुका है यादों का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास। ये है सुनहरे पल, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम गिनिशा आ गए हैं आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बस तैयार हो जाइए एक सुहाने संगीतमय सफर तो बस तैयार हो जाइए एक सुहानी संगीतमय सफर के लिए।

दिल को सुकून देने वाले गीत, जी हाँ दोस्तों, और यादों से भरे लम्हे, बस इसी का नाम है सुनहरे पल। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। आज फिर बजेंगे वो गीत जो कभी हर घर की पहचान हुआ करते थे। बिल्कुल दोस्तों, हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर हाजिर है ऑन रेडियो मॉरिशस, आपके सुनहरे पल।

भी दिलों पर राज करता है ये है सुनहरे पल यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान जी हाँ हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें हमेशा आप मुस्कुराते रहें और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए हमारी तरफ से आपके नाम

संगीत का वो दौर जहां दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, तो चलिए उसी दौर में चलते हैं सुनहरे पल के साथ। दोस्तों, हर गीत एक रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा भी रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपके

अगर आपको पुराने गीतों से मोहब्बत है मेरी जान तो ये महफिल बिल्कुल ये महफिल आप ही के लिए है। साथ रहिए और गीतों का मजा ले लीजिए। पुराने बॉलीवुड संगीत का जादू आज फिर बिखरने वाला है, सो दिल खोलकर सुनिए और यादों में खो जाइए, क्योंकि ये आपका सुनहरे पल हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके दिल को बहलाए और पुरानी यादों में फिर से खो जाने के लिए मजबूर कर देते।

जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ देने के लिए। तो बस यूं ही गिनिशा का साथ देते रहे। मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हो, मॉरिशस में हो, मॉरिशस के बाहर हो, काम पे हो या घर पे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं से भी मेरी जान आप साथ दे रहे हो। तो ये अगला नगमा स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट आपके दिल तक। तो चलिए ये आपके नाम

दोस्तों वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं क्योंकि वो गीत तो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते फिलहाल के लिए इट्स वक्फ होगी निशात से गुड बाय। हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

ममा के कंच पकड़ मछी के खाई हो, ममा के खाई हो

बेटी घरे का भाई हो भाई भेज बेटा डटला नहीं हो तो बहू मरला

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?

0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

0: MBC रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: गाना बनाते हुए तुम जबान से ज्यादा साउंड का ख्याल रखते थे, लफ्जों की साउंड अच्छी हो तो फौरन उन्हें होंठों पर ले लिया करते थे। मानी तुम कहा करते थे लोग पूछ लेंगे, जैसे तुमने इस गाने में पूछा था मुझसे, ये नशेमन कौन सा शहर है यार।